प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पामला के बीच बैठक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा होगी।

0: और दोनों देशों की साझेदारी बढ़ेगी। राष्ट्रपति पामरा को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: राष्ट्रपति पामला ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। तीन दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति पामला के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक जैसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
2: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में बंगाव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 175 अंक बढ़कर 72085 पर और निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 22472 पर था। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। अगले दो दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding bilateral discussions with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. During the talks, they will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The leaders will also exchange views on regional and global developments, including cooperation in multilateral fora. President Parmelin arrived in New Delhi this morning on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior

रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। आज मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। घर आंगन, घर जहां रिश्तों की गर्माहट है, आंगन जहां यादों की खुशबू है और परिवार जहां हर पीढ़ी की अपनी ही एक खूबसूरत कहानी है। और आज के घर आंगन में, आज के विषयों में जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े सवाल जिनका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं। और जिंदगी ही तो हमें खुद पर विश्वास करना सिखाती है। वक्त के साथ साथ ये आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और ये आत्मविश्वास करना हमें सिखाते हैं हमारे शिक्षक, हमारे गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं। आज है विश्व शिक्षक दिवस जो 5 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करता है, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। और आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि आपकी जिंदगी में वो कौन शिक्षक है जिसकी दी हुई शिक्षा आपको आज भी याद है, और वो क्या शिक्षा है अगर आप हमें बताना चाहें तो, आपके जीवन में बहुत काम आई वो शिक्षा वो हमें बताइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgolgia@gmail.com। और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें श्री 420।

0: बोलो क्या बोलो ना
1: से शिक्षक हमें सिखाते हैं और हम ये सारी जिंदगी हमें याद रहता है अगर हमें कोई अच्छी शिक्षा देता है। तो आज का हमारा घर आंगन कार्यक्रम का ये प्रश्न है कि ऐसा कौन है और कौन से गुरु हैं और आपको ऐसी क्या शिक्षा मिली जो आपको जिंदगी भर याद रही या अभी तक याद है। तो आप हमें बताइए fmgulji@gmail.com पर, हम करें आपकी ईमेल्स का इंतजार। और आज सोशल मीडिया के दौर में आपस में तुलना बहुत बढ़ गई है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बड़ी अच्छी नौकरी है, किसी के बच्चे बहुत सफल हैं, कोई विदेश में घूम रहा है, कोई भारत में ही घूम रहा है। तो हम सोचने लगते हैं कि आखिर हम ऐसे क्यों नहीं है। लेकिन हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी की तुलना दूसरे किसी व्यक्ति की जिंदगी के सिर्फ अच्छे हिस्से से करते हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति के दूसरे पहलू को नहीं जानते, क्योंकि मेहनत उसने भी की है, सफलता मेहनत से ही मिलती है। तो इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है। इसलिए तुलना करने की बजाय अपने कल से अपने आज की तुलना कीजिए। मैं आज अपने बीते कल से कितना आगे बढ़ चुका हूँ, मैंने क्या नया नया सीखा है, मैंने अपने लिए क्या किया है और मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ मेहनत पे ध्यान दीजिए, यही तो असली प्रगति है।

गीत आप सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, एफएम गोल्ड कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। हमने एक प्रश्न आपसे पूछा है और हमें ईमेल्स मिलने शुरू हो गई हैं। लिखते नवीन भाटिया मोती नगर नई दिल्ली से कि ताराचंद जी, स्वर्गीय ताराचंद जी जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे, उनकी शिक्षा याद रही कि जिंदगी अगर मगर में नहीं बीतती, आज का दिन ही बेस्ट है। जी हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आज में जीना चाहिए, बीते पलों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अतीत में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अब ये आया है, उमेश कुमार जी खयाला से लिखते हैं कि नमस्ते मैडम जी, हमारे शिक्षक हैं हमारे माता जी, पिताजी और इसके बाद हमारे टीचर्स। ये तो सबसे अच्छी बात कही आपने, क्योंकि माता पिता ही सबसे प्रथम गुरु होते हैं जो आपको हर चीज सिखाते हैं। ईमेल्स मिलनी शुरू हो गई हैं। अब ये हैं राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी चौधरी वास, ये लिखते हैं कि हमारे शिक्षक प्राइमरी में सीताराम जी थे, 20 की आवाज का, 2 30 की आवाज का, 3 पन पन की आवाज की, 5 छठ की आवाज के, 6 प्रकार, इस प्रकार की गिनती याद करवाते थे। और ये जो अभी गाना चला, मैं चली, ये इनको बहुत पसंद है। ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो गिनती हो या पहाड़े हो, वो इस तरीके से याद करवाते हैं कि लोगों को बिल्कुल कंठस्थ हो जाती हैं वो चीजें, तो वो भी याद रहता है। और बहुत अच्छी बात है, हमारे सब श्रोता लिख रहे हैं। आप भी बताइए हमें कि कौन से शिक्षक की कौन सी बात आपको आज तक याद है। हमें ईमेल कीजिए fmgold@gmail.com पर। और हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन में जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े सवाल, जिनका सामना हम कभी ना कभी करते हैं। अब हम हमेशा इस डर के साथ क्यों जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अच्छी नौकरी हो तो लोग पूछेंगे शादी कब होगी, शादी हो जाएगी तो बच्चे कब होंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके करियर की चिंता, हर उम्र में समाज की अपेक्षाएं क्यों, खासकर महिलाओं पर तो ये दबाव कई बार और ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, जो रास्ता किसी दूसरे के लिए सही है जरूरी नहीं वो सबके लिए सही हो। अगर मैं आगे बढ़कर कुछ करना चाहती हूँ या आप आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, वो सब पर लागू नहीं होता है। दूसरों की राय सुनिए, लेकिन अपने जीवन का निर्णय जो है वो सोच समझ कर कीजिए।

महबूब की मेहंदी, इस फिल्म में भी आपने लता मंगेशकर को सुना। परिवार जो होता है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन परिवार की उम्मीदों और अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना जो होता है वो बेहद जरूरी होता है, खासकर महिलाओं के लिए। कई बार माता पिता बच्चों के लिए एक सपना देखते हैं, कभी बच्चे अपने माता पिता के सपने पूरे करने में अपनी पसंद भूल जाते हैं। इसी तरह महिलाएं भी परिवार की जिम्मेदारियों में अपनी इच्छाएं पीछे छोड़ देती हैं। परिवार का सम्मान करना बहुत जरूरी है और अच्छा भी है, लेकिन परिवार का सम्मान करते हुए अपनी इच्छा को भी महत्व देना चाहिए। परिवार की अपेक्षाएं ज्यादा हो सकती हैं, मगर अपनी इच्छाएं अपने सपने दबाना सही नहीं है। सपनों को नई उड़ान दीजिए। घर में रहकर या जो परिवार चाहता है उसके साथ साथ भी आप अपने सपने अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनी खुशी के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। परिवार सर्वोपरि है, ठीक है, मगर साथ साथ अपने दिल की खुशी भी तो जरूरी है। अपनी खुशी के बारे में सोचना भी जरूरी है।

और हम भी अपना वादा निभा रहे हैं ईमेल्स पढ़ के जो हमारे श्रोता भेज रहे हैं। बहरहाल ये गाना हमने लिया था फिल्म जॉनी मेरा नाम से, किशोर कुमार आशु भोसले की थी आवाज है। और अब हमें ईमेल मिल गई है हमारे श्रोता सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि आपको सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं घर आंगन। बच्चों का सबसे पहला और बड़ा शिक्षक होता है उसकी माता, उसके पिता। हमारे माता पिता की शिक्षा हमेशा HHH रही, यानी ऑनेस्ट अम्बल एंड हेल्पफुल। क्या बात है, आप आज का सोमवार की शुभकामनाएं भी दी है इन्होंने, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात है, HHH का फंडा तो बहुत अच्छा लगा। और अब लिखते हैं राजेश शर्मा गाजियाबाद से। मुझे याद है जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो मैं उसे अपने क्लास में पढ़ने वाले में सबसे अच्छा बच्चा था। इस बात का शायद मुझे थोड़ा घमंड था, अहंकार था। मेरे पूजने गुरुजी स्वर्गीय पंडित श्रीराम परीक्षा शर्मा ने मुझे समझाया था, कहा था ईश्वर तुम्हें सफलता की ऊंचाई पर बनाए, परंतु तुम एक बात याद रखना, कभी भी तुम अहंकार मत करना। बहुत अच्छी बात आपके गुरुजी ने आपको बताई। और आप लिखते हैं कि उनकी यही बात आज तक मैं नहीं भूला हूं, वो हमेशा मेरी यादों में रहते हैं, मैं हृदय से उनके आभार और उनकी पूजा करता हूं। ये मेल हमने पढ़ी राजेश शर्मा की गाजियाबाद से। और ये लिखते हैं, अगली मेल हमें मिली है गौरी शंकर जी की नांगलोई से। ये लिखते हैं

राधा बेटा राम राम 1970 की बात है। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। हिसार हरियाणा में हमारे मास्टर जी का नाम था काका राम। वो क्लास के बाद में हमें कहानी सुनाते थे और बड़े ध्यान से हम कहानी सुनते थे। वो कहानी भी शिक्षाप्रद होती थी। वो कहते थे जैसे तुम कहानी ध्यान से सुन रहे हो ऐसे ही ध्यान पढ़ाई में लगाओ तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। आज भी मास्टर जी का नाम याद आता है और उनकी दी हुई शिक्षा भी याद आती है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी नांगलोई से जो आप लिखते हैं कि बहुत अच्छी कहानी, क्योंकि हम शिक्षक जो होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई कहानी हमें बताते हैं जो हमें हमारे जीवन को प्रेरित करती है। तो हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं अपने श्रोताओं से और आज लेकर आ रहे हैं श्रोता वो बातें जो उन्होंने शिक्षा ली अपने गुरुओं से। किसी भी शिक्षा शिक्षक ने जो भी आपको शिक्षा दी वो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं fmgolgia@gmail.com पर, क्योंकि सफलता का पैमाना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। क्या बड़ी नौकरी सफलता है या बड़ा घर सफलता है या बहुत सारा पैसा कमाना सफलता है? जी नहीं, जरूरी नहीं है। किसी महिला के लिए अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना सफलता हो सकती है। किसी बुजुर्ग के लिए स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन भी सफलता हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए छोटा सा व्यवसाय सफलता हो सकता है। इसलिए दूसरों के पैमाने से अपनी सफलता को मत नापिए। जिंदगी में आपका संतोष और आत्मसम्मान आपको मिलता रहे वो सफलता है।

श्रोताओं से रूबरू हो रहे हैं एक ईमेल के जरिए। जी हाँ, आप ईमेल हमें भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि जिंदगी में किस शिक्षक ने आपको ऐसी कौन सी शिक्षा दी जो आपके बड़े काम आई, और हमें भी तो पता चले, हमें भी तो वो शिक्षा पता होनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। अब हमें पुनीत जी दिलशाद कॉलोनी से एक मैसेज मिला है कि विनोद सर कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का संसार जीना चाहिए। जी हाँ, हर व्यक्ति को अपने हिस्से का संसार जीना चाहिए, कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। अब कभी ये नहीं करनी चाहिए वो ड्राइविंग तेज करता है तो मैं भी करूंगा, या वो गलत आदतों में है तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हिस्से का संसार जीना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, क्योंकि कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। अब वासु लिखते हैं कि खुश रहना बहुत जरूरी है जो भी हालात हो, इनके शिक्षक इन्हें बताते हैं, इनकी गरिमा मैडम ने इन्हें बताया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हर हालात में खुश रहना भी बहुत जरूरी है। अब एक बात और है जो हम आज के कार्यक्रम में आपसे करेंगे कि कई बार कोई व्यक्ति सफल ना हो पाए, असफल हो जाता है, तो क्या पूरी जिंदगी असफल हो जाती है? नौकरी नहीं मिली तो हम असफल हो गए, व्यवसाय में नुकसान हुआ तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया, किसी परीक्षा में अगर कम अंक आ गए, रैंक कम आ गई तो लगता है आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन असफलता जिंदगी का अंत नहीं है, अनुभव का एक पड़ाव है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको एक अनुभव, एक ठोकर मिली जिसमें आपको अनुभव भी मिला। ये बात ध्यान रखने वाली है कि अनुभव मिलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कि कई बार परिणाम के आधार पर बच्चों को आंका जाता है, वो भी ठीक नहीं है। कोशिश अच्छी थी, अगली बार और बेहतर करेंगे, ये बात सब पर लागू होती है। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। ये मतलब है कि परिवार और समाज की बिल्कुल ना सुने, इसका अर्थ है सबकी सुनिए, विचार कीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लीजिए। जिंदगी में कई रास्ते हैं, कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, कभी रास्ते में सफलता मिलेगी, कभी आलोचना मिलेगी, लेकिन अगर हमें अपने निर्णय पर विश्वास है ना, और हम ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, तो रास्ता धीरे धीरे बनता चला जाता है। इसलिए हमारा आज का ये संदेश है कि दूसरों की बनाई हुई जिंदगी मत जिए, अपनी परिस्थिति को समझिए और अपना रास्ता बनाइए, और देखिएगा मेहनत और ईमानदारी से सफलता जरूर मिलेगी।

अनपढ़ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और बातें चल रही थी जिंदगी की, अब कुछ बदलते मौसम की बात हो जाए। मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण इन दिनों वायरल संक्रमण या फ्लू की समस्या देखी जा रही है। सुबह शाम की ठंड और दिन के समय में गर्मी महसूस कराने वाला ये मौसम हमारी सेहत के लिए बहुत प्रतिकूल है। ऐसे में खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। तापमान में वृद्धि के कारण ये मौसम खुशनुमा भी लगता है और कई बार जब शाम को ठंड हो जाती है तो भी अच्छा लगता है। दिन में गर्मी हो जाती है, लगता है गर्मी होने लगी। मगर कुछ लोगों के लिए, विशेषकर एलर्जी की जिन्हें समस्या है ना, उनके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि दिवाली के समय में लोग साफ सफाई भी कर रहे हैं। अब जैसे जैसे त्यौहार नजदीक आएंगे लोग घर की साफ सफाई करेंगे, तो जिन्हें एलर्जी है उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। मौसमी परिवर्तन ने वातावरण में पोलन संक्रमण यानी पराग का स्तर बुखार के लक्षणों को बढ़ा सकता है। ये पराग सूक्ष्म होते हैं और हवा के साथ साथ सीधे फेफड़ों में जाते हैं। चूंकि ये बाहरी तत्व है तो शरीर इन्हें स्वीकार नहीं करता और इससे लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देता है। इसलिए शरीर में तेज प्रतिक्रिया होती है, बार बार छींकें आती हैं, गले में खराश होती है, नाक बहती है जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, सिर दर्द भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है सावधानी, मास्क लगाएं, बाहर का खाना ना खाएं, साबुन से हाथ धोने की आदत बनाएं ताकि संक्रमण बढ़ ना जाए। ग्रीन टी लें, अंजीर अदरक जैसी एंटीऑक्सीडेंट चीजें लें, शरीर को आराम दें, हाइड्रेट रहें, पानी के साथ साथ नारियल पानी छाछ लें और फ्लू से बचे रहें। गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के गरारे किए जा सकते हैं। तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, गुड़ की चाय या काढ़ा पीजिए। कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। सेहत रहेगी तभी तो आप खुश रह पाएंगे।

में हमने अपने श्रोताओं से पूछा, एक मैसेज और आया है लवली जैन का रोहिणी से। वो लिखते हैं, उन्हें शिक्षा दी थी इनके जो गुरुजी हैं बचपन में, कि हर वक्त आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहो और छात्र बने रहो। शिक्षा वो जो कहीं से भी मिल जाए ले लीजिए, इंसान हर पल सीखता है। बिल्कुल सही लिखा है लवली जैन जी ने, और उनके शिक्षक ने भी बहुत अच्छी शिक्षा दी। और सभी उन श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में हमें मेल्स भेजी, उनका भी धन्यवाद जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम ध्यान से सुना। और ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म इज्जत से लता मंगेशकर की आवाज में, और इस कार्यक्रम से यानी कि घर आंगन से राधा को दीजिए विदा। लेकिन ध्यान नहीं रखिए कि इस खूबसूरत विचार के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने लिए समय निकालिए, मुस्कुराते रहिए, फिर कभी फिर से मुलाकात होगी। राधा को फिलहाल इस कार्यक्रम से आज्ञा दे, सुनते रहिए।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू

0: होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
4: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
3: There are rooms to operate from, both sides would do it.
2: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समझौते में लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू

जी हाँ, जब भी 1970 की बात चलेगी तो इस फिल्म का जिक्र जरूर होगा। इस फिल्म का निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक शक्ति सामंत ने और मुख्य कलाकार के रूप में नजर आए थे शमी कपूर, आशा पारेख, हेलेन और प्रेम चोपड़ा। फिल्म के निर्माता अजीत चक्रवर्ती थे और संगीत दिया था प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने। गीत के बोल जो आप इतने खूबसूरत से सुन रहे हैं, ये लिखे थे हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म के चार प्रमुख कलाकार, जैसा कि हमने आपको बताया, शमी कपूर, आशा पारेख, हेलेन और प्रेम चोपड़ा, इससे पहले 1966 की लोकप्रिय हिट फिल्म तीसरी मंजिल में एक साथ नजर आ चुके थे। पगला कहीं का, इसमें दर्शकों को एक बार फिर से इस लोकप्रिय टीम को देखने का मौका मिला था। ये फिल्म जो है, इसकी कहानी का जो केंद्र है वो है सुजीत, जिसका किरदार निभाया शमी कपूर ने। आशा पारेख डॉक्टर शालिनी यानी कि शालू बनी थी, हेलेन ने जेनी का किरदार निभाया था और प्रेम चोपड़ा श्याम के किरदार में थे। तो बात करते हैं थोड़ी सी इस फिल्म की कहानी की, जिसका केंद्र था सुजीत, जिसका बचपन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीतता है। बचपन की एक घटना उसके जीवन पर गहरा असर डालती है और आगे चलकर उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और वो समाज की नजर में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगता है जो सामान्य जीवन से अलग है। फिर उसकी मुलाकात होती है श्याम से, जो उसे गाते हुए सुनता है और उसकी गायकी को पहचान कर उसे एक नाइट क्लब में गाने का मौका देता है। यही उसकी मुलाकात होती है जेनी से। प्यार, गलतफहमियां, परिस्थितियां और सुजीत की जिंदगी की पुरानी परेशानियां कहानी को आगे बढ़ाती हैं। फिर क्या होता है वो भी बताएंगे, उसके पहले ये गीत खूबसूरत सा रफी साहब की आवाज में।

जी हाँ, पगला कहीं का। कहानी थोड़ी बहुत आपको बता दी। बाद में कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि सुजीत को मानसिक अस्पताल जाना पड़ता है। वहीं उसकी जिंदगी में डॉक्टर शालिनी यानी शालू की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है और यही वो जगह है जहां फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रह जाती बल्कि इंसान और समाज के नजरिए की कहानी भी बन जाती है। पगला कहीं का की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं आप क्या है? इसका संगीत जो आप सुन रहे हैं, शंकर जयकिशन की धुनें और हसरत जयपुरी के गीतों ने फिल्म को यादगार बनाया। फिल्म में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों की आवाज सुनाई दी। एक से एक बढ़कर गीत हैं और ये गीत फिल्म की अलग अलग भावनाओं को सामने लाते हैं। कहीं दर्द है, कहीं मस्ती है और कहीं जिंदगी के संवाद भी हैं। आपको जो हमने पहला गीत सुनवाया था वो गीत तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जानते हैं ये गीत शम्मी कपूर साहब को इतना पसंद था कि उनके जीवन के बाद के वर्षों में ये गीत उनके मोबाइल फोन की रिंगटोन तक बन गया था। तो चलिए आप सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में खूबसूरत सा गीत मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।

शमी कपूर साहब को हम अक्सर उनकी चुलबुली, रोमांटिक और बेहद ऊर्जावान स्क्रीन इमेज के लिए याद करते हैं, लेकिन पगला कहीं का में उन्होंने सुजीत जैसा भावनात्मक और मानसिक संघर्ष से गुजरता किरदार निभाया। ये उनके सामान्य रोमांटिक अंदाज से काफी अलग था और शायद यही वजह है कि आज भी ये फिल्म शमी कपूर की फिल्मोग्राफी में एक अलग रंग लेकर खड़ी दिखाई देती है। कभी कभी कोई गीत किसी किरदार की पूरी जिंदगी की आवाज बन जाता है। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे भी कुछ ऐसा ही गीत था। इसके शब्दों में जैसे किसी ऐसे इंसान की पुकार है जो कह रहा हो कि तुम मुझे भुला देना शायद आसान नहीं होगा ये, क्योंकि मेरी यादें तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। और यही भाव इस गीत को फिल्म से बाहर निकाल कर श्रोताओं के दिल तक पहुंचाता है। ये गीत रफी साहब के साथ ही लता जी की आवाज में भी है, कुछ देर बाद वो गीत भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल आशा जी की आवाज में सुनवाते हैं ये एक और खूबसूरत सा गीत है।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से और आज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं फिल्म 1970 की पगला कहीं का। और आज इस सफर में आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। अब मैं आपको सुनवा रही हूं वो खूबसूरत सा गीत जो इस फिल्म की जान है, जिसे रफी साहब की आवाज में आप सुन चुके हैं और लता जी की आवाज में अब आपको सुनवाती हूं। आपके ढेर सारे संदेश भी मेरे पास पहुंच गए हैं, उनको भी मैं शामिल करूंगी। फिलहाल इस गीत को सुनिएगा और उसके बाद आपके संदेश हम शामिल करेंगे।

सफर में आप हम सफर बने हैं और भी बहुत सारे संदेश हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको, क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और आपको हम निराश नहीं कर सकते हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार तिवारी जी हैं हमारे साथ, असलम खान जी हमारे साथ हैं, मसरूर हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी है और मैं आप सबको निराश नहीं करना चाहती, इसलिए जल्दी जल्दी आपके संदेश ले रही हूँ। बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी मधु जी हमारे साथ हैं, मेहर अरोड़ा पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से हमारे साथ हैं, बन बघेरा राजनगांव से योगेश आशा सर्वा जी हमें सुन रहे हैं। और अब जाते जाते इस फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए छोड़े जा रही हूँ। 2:30 पर प्रोग्राम रहेगा एक ही कलाकार, तो आपको जाना कहीं नहीं है, बस थोड़ी देर में ही आपको वापस आना है क्योंकि आज के जो सितारे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और उनके ऊपर फिल्माए गीत भी लाजवाब हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम से यानी एक ही फिल्म से अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते स्विट्जरलैंड दे राष्ट्रपति गी मामला ने आज नवी दिल्ली विच दवल्ली गलबात कीती। वख-वख खेत्रां विच दवल्ले सहयोग विच प्रगति दी समीक्षा कीती गई। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत EU आजाद व्यापार समझौते की शलाघा करदे कहा कि यह व्यापार समझौतियां ते गलबात करन लई भारत की पहुंच नूं दर्शाउंदा है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब ते मुख्यमंत्री दफ्तर नाल संबंधित कथित भ्रष्टाचार अते नकदी बदले ट्रांसफर मामले की केंद्रीय पड़तालिया ब्यूरो CBI जांच के हुक्म दिते ने। भारत अते कैनेडा अज ओटवा विच तजवीजशुदा व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते CEPA ते गलबात का पंजवां दौर शुरू करेंगे। मिस्र, सुडान, एरिट्रिया अते सोमालिया ने देशां दी प्रभुसत्ता नाल समुद्र दे शासन अते पानी दे अधिकारां दी महत्ता ते जोर दित्ता है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच स्विट्जरलैंड दे राष्ट्रपति गी पैमला नाल दवल्ली गलबात कीती। गलबात विच व्यापार अते निवेश, विज्ञान, तकनालोजी अते नवीनता, आवाजाई, सभ्याचार अते लोकां तों लोकां दे संपर्क समेत वख-वख खेत्रां विच दवल्ले सहयोग विच प्रगति दी समीक्षा कीती गई। दोवें नेता बहुपक्षी मंचां विच सहयोग अते खेतरी ते आलमी विकास ते चर्चा कीती। गलबात तों बाद अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ते स्विट्जरलैंड आलमी शांति ते स्थिरता लई रल के काम करदे रहणगे।
2: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: यूरोपियन आजाद व्यापार समझौता एसोसिएशन देशों दरमियान समझौते बारे श्री मोदी ने कहा,
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया।

0: वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड में भारतीय बरामदात के लिए बाजार तक रसाई को बढ़ाने और सरमायाकारी में मजीद सहूलत पैदा करने के लिए मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इसी वक्त में भारत बायोटेक्नोलॉजी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और खुराक को डिब्बाबंद करने जैसे अहम शोबों में स्विट्जरलैंड की जानिब से नई सरमायाकारी को रागिब करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड, साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: वजीर खाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सदर गी पामेला से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने भारत EFTA TEPA के वादे सिलसिले में भारत स्विट्जरलैंड शराकतदारी को मुस्तहकम करने की खातिर सदर पामेला की कोशिशों की सताइश की। इससे कबल स्विट्जरलैंड के सदर ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर गुलाय अकीदत नजर किए। सदर पामेला आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सदर मुर्मू स्विट्जरलैंड के अपने हम मनसब के एजाज में एक सरकारी जियाफत की भी मेजबानी करेंगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत के माहदे की सताइश की और कहा है कि ये तिजारती माहदों से मुतालिक मुजाकरात और उन्हें हतमी शक्ल देने के हवाले से भारत के तरीकेकार को उजागर करता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिख लीडर्स मीटिंग से खिताब करते हुए मुतरमा सीतारमन ने कहा कि इस माहदे को बजा तौर पर तमाम माहदों की असल करार दिया गया है। इस माहदे में तकरीबन 2 अरब अफराद की आबादी रखने वाली मईशतें शामिल हैं जो मजमूई तौर पर दुनिया की तकरीबन 1/4 GDP की नुमाइंदगी करती हैं। वजीर खजाना ने कहा कि यह मुआहदा दोनों फरीकों को एक दूसरे के बाजारों तक मुकम्मल रसाई फराहम करता है और इस बात को भी यकीनी बनाता है कि मुसाबकती सलाहियत मुतासिर न हो। उन्होंने बताया कि भारत ने इस मुआहदे के तहत 92.5% टैरिफ लाइंस खोल दी हैं जो तिजारती मालियत के लिहाज से तकरीबन 97% तिजारत का अहाता करती हैं। इस मौके पर फ्रांस के यूरोप और उमूर खारजा की वजारत में यूरोपीय उमूर के वजीर नुमाइंदा बिन्यामिन हद्दाद ने कहा कि भारत यूरोपीय आजाद तिजारती माहदा भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत को 2 गुना करने का मौका है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती माहदे के लिए मुजाकरात अभी जारी हैं और उन्हें अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई है। आज नई दिल्ली में म्यूनिख लीडरों की मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए मुहतरमा सीतारमन ने बताया कि दोनों मुल्क एक अहम मरहले पर पहुंच चुके हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि नोएडा बैन अलावामी हवाई अड्डा किस तरह उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुल्क की तरक्की की तस्वीर बदल रहा है।
2: नोएडा बैन अलावामी हवाई अड्डा भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्टों में से एक है। इसका पहला मरहला सरकारी और निजी शराकतदारी PPP मॉडल के तहत तकरीबन 11,200 करोड़ रुपए की मजमूई सरमायाकारी से तैयार किया गया है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को इस हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश और विकसित भारत बनाने की मुहिम में एक नए बाब का आगाज है।
1: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है।
2: पहले मरहले में हवाई अड्डे में सालाना 1,20,00,000 मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश होगी। ये हवाई अड्डा मुल्क के शहरी आबादी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और इलाकाई और बैन अलावामी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की समत एक अहम कदम है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने एक कश्ती पर

0: escalate the Yemen conflict and open a new phase of fighting. Manish Shiva, Akashwani News, Dubai.
1: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from most parts of Marathwada and Vidarbha and some more parts of Maharashtra and Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The weather agency said thunderstorms and lightning conditions will continue over Uttarakhand, Telangana, Sub-Himalayan, West Bengal and Lakshadweep till tomorrow. Similar weather conditions are also expected over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura for the day. Meanwhile, strong surface winds are expected over Andhra Pradesh during the next 2 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in afternoon session today. The Sensex rose 218 points to 72,128, while the Nifty added 71 points to 22,493, when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained almost 0.5% and the small-cap 100 index advanced 0.2% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. Says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Punjab and Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलां के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलां के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामलां की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
3: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

0: से स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्ज्वल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
1: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
4: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
5: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
4: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
5: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद

0: का लगभग एक चौथाई हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया।

0: हमारे राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
1: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
2: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
1: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
3: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
1: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI के नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को

0: खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म्ड फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। इन डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
1: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सामीन अभी तक आप आकाशवाणी दिल्ली से नेशनल न्यूज सर्विस के नशरियात समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामीन दिन के 2:30 बजे हुआ चाहते हैं, पेश खिदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। भेजने वाले हैं अकोला महाराष्ट्र से राजेश भी कारिया जी। वो लिखते हैं,
1: जो निश्चल प्रेम में रहते हैं वो छल समझ नहीं पाते और जो छल में रहते हैं वो निश्चल प्रेम नहीं समझ पाते।
2: जी आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: तो हमें पहला संदेश मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा।
1: और बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और ख्याति सारवा।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।
1: और छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
2: हम उमंग कार्यक्रम में मासिक संस्करण श्रोता संवाद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस कार्यक्रम से महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को प्राप्त होती है। सच मानिए ये कार्यक्रम जानकारी का महत्वपूर्ण खजाना है। 7 सितंबर के कार्यक्रम श्रोता संवाद में शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर डॉक्टर श्वेता तंवर जी से अजीत सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सरल शब्दों में सुनवाई गई। ये जानकारी सुनवाने के लिए डॉक्टर श्वेता तंवर जी के साथ साथ अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर छत्तीसगढ़ से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सती बाई साहू जी का।
2: ईदूग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका उडुपी जिला कर्नाटक से एच सिद्धार्थ जी लिखते हैं।
1: आप लिखते हैं, आदरणीय कार्यक्रम के बारे में हमारी प्रतिक्रिया
2: जी।
1: स्त्री शिक्षण को आपने प्रोत्साहन देकर महिलाओं में हिम्मत बढ़ाई है। पुराने जमाने में पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक कार्यकलाप ही नहीं किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को लोग खारिज करते थे
2: जी।
1: जेंडर डिस्पैरिटी पर आपका श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब सुनिए पिछले सप्ताह

0: पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण गंगोत्री क्या है और ये कहाँ स्थित है।
0: इसका उत्तर है साथियों, दक्षिण गंगोत्री दक्षिण ध्रुव पर स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है।
1: और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया।
0: इसका उत्तर है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा उसकी माता को दिया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न था, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के भीतर भूकंप, भूगर्भीय, ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण सुनामी आती है। समुद्र के भीतर भूस्खलन भी इसका मुख्य कारण है।
1: और हमारा अगला सवाल था कि मेघालय शब्द का क्या अर्थ है।
0: मेघालय शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, मेघ और आलय।
1: जी,
0: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो अर्थ बना मेघालय यानी मेघों या बादलों का घर।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
0: गांधी जी द्वारा रचित संभवतः सबसे अधिक चर्चित किताब का नाम है, मेरे सत्य के प्रयोग।
1: जी, और अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हो जाइए तैयार, हमारा आज का प्रश्न है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं।
1: श्रोताओ, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम। तो आज के पहले कार्यक्रम के क्रम में हम सुनेंगे हमारा मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
0: आइए सुनते हैं श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। श्रोताओ, प्रस्तुत है उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के पहले सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर। तो आज इस क्रम में हम बात करेंगे NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों की। तो श्रोताओ, आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव। आप NCERT के सामाजिक विज्ञान और शिक्षा विभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, आज के उमंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूँ और आपने समय दिया मुझको सुनने के लिए, इसका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान एक बहुत अहम विषय है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के बारे में बताने का कोशिश करूंगी।
1: तो डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में NCERT की पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे की विषय वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए और बताइए कि यह सामाजिक विज्ञान से कैसे जुड़ा है।
2: हाँ अजीत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी को पता है, जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो विषय तो समाज से जुड़ा ही होता है।
1: जी,
2: दूसरा, समाज और प्रकृति में क्या समन्वय है उसके बारे में भी हम बताने का कोशिश करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से।
1: जी,
2: और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बल दिया है कि जब भी हम बच्चों को समाज के अध्ययन के बारे में बताने का प्रयास करें तो हमें समाज के जो विषय हैं, जैसे आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये इसका समावेश है और हम इसको सोशल साइंस कहते हैं यानी समाज शास्त्र। आप हमारी पाठ्य पुस्तक मिडिल स्टेज की ले लीजिए और आप देखिए कि जितनी भी पाठ्य सामग्री है, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, अतीत के चित्रपट, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से क्या

0: जुड़ाव है
1: जी।
0: इन विषयों को हम अपनी छठी सातवीं आठवीं में दिए हैं और उसके अंदर जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे गहन ढंग से आप देखेंगे कि उसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन है, यानी कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए इतिहास ले लीजिए कि समय सारणी से जो भी घटना घटी है उसके बारे में हमारा विषय वस्तु आपको बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ घटनाओं का विवरण हम जब करते हैं तो हमारा विषय वस्तु आपको जोड़ने की कोशिश करता है ताकि आपके मन में जिज्ञासा, आपके मन में उस विषय के बारे में और गहन ढंग से कहां से लें उसके बारे में, और तीसरा आप किन गतिविधियों के माध्यम से ये विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रकृति आपदा के बारे में आपकी जिज्ञासा हुई तो प्रकृति आपदा के बारे में आप अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ सकते हैं, साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि क्यों ये घटती है और हमें क्या करना चाहिए
1: जी।
0: इसी तरह हमारे पाठ्यपुस्तक में आप देखिए जो विषय हमारे भूगोल से जुड़ा है, हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो
1: प्राकृतिक संसाधन
0: क्या है, हमारी प्रकृति संसाधन है वो क्या है, और साथ साथ हम बताने की कोशिश करते हैं उसकी संरचना हम कैसे करें, ताकि आज आपने सुना होगा हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो छोटी छोटी गतिविधि से हम कैसे अपनी ये धरोहर का संरक्षण करें। जब आप पाठ्यपुस्तक उठाते हैं और ये विषय पढ़ते हैं हमारी संस्कृति विरासत एवं भी प्रकृति संसाधन है वो क्या है, और साथ साथ हम बताने की कोशिश करते हैं उसकी संरचना हम कैसे करें, ताकि आज आपने सुना होगा हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो छोटी छोटी गतिविधि से हम कैसे अपनी ये धरोहर का संरक्षण करें। जब आप पाठ्यपुस्तक उठाते हैं और ये विषय पढ़ते हैं हमारी संस्कृति विरासत एवं

कुमार सानू साथियों की आवाज़ों में ये नगमा बाजीगर फिल्म से आपने सुना। आज के प्रोग्राम की अगली और आखिरी पेशकश उदित नारायण की आवाज़ में, फिल्म का नाम है बेवफा।

0: बेवफा फिल्म का नगमा उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। आकाशवाणी से जारी है उर्दू सर्विस की नशरियात। फ्रीक्वेंसी है मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उर्दू सर्विस सुनी जा सकती है। अब पेश है प्रोग्राम कहकशां। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे युवा फिल्म की कहानी और नगमे।
1: फिल्म युवा के प्रोड्यूसर हैं जी श्रीनिवास, डायरेक्टर मणि रत्नम, हीरो अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबराय। हीरोइने हैं रानी मुखर्जी, करीना कपूर और ईशा देओल। युवा कहानी है तीन ऐसे नौजवानों की जिनका जिंदगी जीने का अंदाज एक दूसरे से जुदा है। इनमें से एक नौजवान है लल्लन अभिषेक बच्चन, जो हुंडा मवाली किस्म का है और अक्सर मारा पीटी के कारनामे करता रहता है। बेहद अक्कड़ मिजाज वाला लल्लन अपनी गैर कानूनी हरकतों की वजह से अक्सर जेल आता जाता रहता है। लल्लन की बीवी शशि यानी रानी मुखर्जी उससे बेहद प्यार करती है। दूसरा नौजवान है माइकल यानी अजय देवगन, जो मुल्क बेहतरी के लिए कुछ अच्छे काम करना चाहता है। वो मुल्क में फैली बदउनवानी को खत्म करना चाहता है। माइकल की महबूबा है लीला यानी ईशा देओल, जो माइकल को दिलो जान से चाहती है। माइकल भी लीला को दिल की गहराई से चाहता है। तीसरा नौजवान है अर्जुन यानी विवेक ओबेरॉय, जो अभी कॉलेज स्टूडेंट है। मस्त मौला किस्म के आशिक मिजाज अर्जुन की आंखों में लंदन और अमेरिका जाने के सपने बसे हैं। वो अपने इन सपनों का जिक्र अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड मीरा यानी करीना कपूर से किया करता है। माइकल की महबूबा लीला अपने चाचा चाची के घर रहती है, मगर वो उनके बर्ताव से दुखी रहती है। उसका दुख देखते हुए माइकल उसे अपने साथ रहने की बात कहता है, मगर वो बगैर शादी के उसके साथ रहने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ मीरा के प्यार में डूबा अर्जुन भी उससे एक साथ रहने को कहता है, मगर मीरा उसे ये कहकर झिड़क देती है कि अभी जुमा जुमा 4 दिन भी नहीं हुए उन्हें मिले हुए और वो अभी से एक साथ रहने की बात करने लगा। उधर गुंडागर्दी की वजह से जेल में बंद लल्लन को जब रिहा कर दिया जाता है तो वो अपनी बीवी शशि को लेने उसके घर जाता है, मगर लल्लन की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से शशि का बाप उसे लल्लन के साथ भेजने से इनकार कर देता है। मगर लल्लन से बे इंतहा मोहब्बत करने वाली शशि का मन नहीं मानता, लिहाजा वो लल्लन के साथ चली जाती है। घर आने पर लल्लन नौकरी के लिए भाग दौड़ करता है। एक जगह जब उसे 2 करोड़ की मशीन की रखवाली के लिए महज 2000 रुपए महीना तनख्वाह देने की पेशकश की जाती है तो वो इतनी कम तनख्वाह लेने की बात पर मालिक से झगड़ा कर बैठता है और वहाँ काम करने से इनकार कर देता है। घर आने पर शशि उस पर नाराज होती है। उसकी नाराजगी तब और बढ़ जाती है जब लल्लन के हुंडे मवाली दोस्त उसे घर बुलाने आते हैं। शशि जब लल्लन को जाने से रोकती है तो गुस्से में उस पर हाथ उठा बैठता है, मगर जब उसे एक औरत बताती है कि शशि माँ बनने वाली है तो लल्लन को बहुत पछतावा होता है। वो शशि को प्यार करता है और शशि भी बहुत खुश होती है।

शशि की जिंदगी इस तरह कभी प्यार तो कभी तकरार करने में बीत जाती है। शशि के लाख समझाने के बावजूद लल्लन अपनी उल्टी सीधी हरकतों से बाज नहीं आता। लल्लन की हरकतों से पहले ही परेशान शशि तब और दुखी हो जाती है जब उसे पता चलता है कि लल्लन ने एक होटल में कॉलेज के कुछ लड़कों से मारपीट की है। उसी होटल में एक मिनिस्टर भट्टाचार्य अपनी तकरीर देने आता है। लल्लन का बड़ा भाई गोपाल उस मिनिस्टर के लिए काम करता है। मिनिस्टर जब कॉलेज के लड़कों से मारापीटी करने की वजह से लल्लन को बुरा भला कहता है तो उससे आइंदा ऐसा न करने का वादा करता है, मगर वो लल्लन ही क्या जो सुधर जाए। शशि एक रोज फिर जब उसके हाथ में पिस्तौल देखती है तो लल्लन पर बहुत नाराज होती है, मगर

ललन पर शशि की नाराजगी का कोई असर नहीं होता। उधर ललन की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से मिनिस्टर भट्टाचार्य उसे अपनी राह का रोड़ा समझने लगता है, लिहाजा वो ललन के भाई गोपाल से ललन को ही रास्ते से हटाने को कहता है। इस तरह से वो मिनिस्टर भाई को भाई का दुश्मन बना देता है, लिहाजा एक दिन ललन अपने ही भाई की गोली का निशाना बनते बनते रह जाता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर भट्टाचार्य के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है। इस काम को अंजाम देने के लिए वो अपने दोस्तों की मदद लेता है। मिनिस्टर भट्टाचार्य को जब माइकल के चुनाव में लड़ने की बात पता चलती है तो उसे रोकने की पुरजोर कोशिश करता है, मगर माइकल उसके बहकावे में नहीं आता। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हर हाल में चुनाव लड़ेगा। उधर माइकल की महबूबा लीला भी इस मुहिम में माइकल का साथ देना चाहती है, लिहाजा अब वो बिना उससे शादी किए ही उसके घर रहने आ जाती है। अब वो माइकल का साथ पाकर बहुत खुश है।

बैरिस्टर भट्टाचार्य जब लाख कोशिशें करने के बावजूद माइकल को चुनाव लड़ने से नहीं रोक पाता तो वो ललन से माइकल को खत्म करने को कहता है। ललन माइकल को 3 गोलियां मारता है मगर खुशकिस्मती से वो बच जाता है। माइकल की नाजुक हालत देखकर अर्जुन उसे अस्पताल में भर्ती करा देता है। उधर माइकल अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था तो दूसरी तरफ अर्जुन महबूबा मीरा के प्यार में खोया हुआ था।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कहकशां। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। आइए सुनिए अब कुछ फिल्मी नामें।

अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने ये नगमा सुना। फिल्म का नाम था हम। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नज़र है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म है मैंने दिल तुझको दिया।

प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। आवाजें थी बापी लाहिरी और आशा भोसले की। प्रोग्राम की अगली पेशकश आवारगी फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में जुर्म फिल्म का नावा अभी आपने सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में है। फिल्म का नाम है मदहोशी।

शब्बीर कुमार के साथ ये थी लता मंगेशकर, फिल्म थी वो 7 दिन। प्रोग्राम की अगली पेशकश अंदाज फिल्म से है, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: टेंडर पर ऑनलाइन था जिन
1: तो दिया अलग अलग सिस्टम है इनायत साहब गवर्नमेंट इस चोस होत सपोज 50,000 तक माने डायरेक्ट वेंडर के नख्यू मैं जा
0: अच्छा ऑफिसर को
1: ह्यूमन माने डायरेक्ट ओ डिपार्टमेंट इज ऑफिसर मींस कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज डायरेक्ट माना बायर के ना 50,000 सुप ख्यू मैं जा स्ना 25 उत्पिन दे या बड़ा इसमें से 50 उत्पिन सर 50 के ना 10 लाख सुप जैसे स्ना अति सिस्टम उत्पिन कोटेशन जरे L1 चोचा दे यंग खुरी कंप्यूटर ऑनलाइन सिस्टम का 10 लाख सुप डायरेक्ट परचेज बा या बीटा तंग मैं मगर 10 लाख ना एल तक बीट तंग माना जरूरी अगर आप गवर्नमेंट 10 लाख से गेन ला क्यों चीन ना जरूरी बीट तंग चा मगर 10 लाख से बीटा तंग मैं चीन डायरेक्ट क्यों मैं
0: शेविन साहब जेमी मेन फ्यूचर पर चीन जो ट्रांसपेरेंसी
1: ट्रांसपेरेंसी
0: बिल्कुल गवर्नमेंट दिया क्लेम मेन था यो पर दिया नुक ngatanga price na product yanu gachuga buyer na seller si interaction po ya traditional procurement system pe kana gachu farak ho jo
1: tab dekho sir traditional isme sab aapko online hai live hai yahan yo dicho shochamen ki ye aur isme system human intervention kuch nahi hai ye samjhen sub ngate me rate jo bhi aayega wo system khud dega suppose yaris dikana jo buyer id face फिर आपको कैटेगरी ऊंची सर या सपोज या कार्ट्रेज खोची ना कार्ट्रेज की कैटेगरी कैसे चा जुग बस्तान एक ऊंची 10 लाख 15 लाख 15 लाख देख ना यारी अप्रूवल और रिजनेबिलिटी ऐसा भी कहीं यार क्लिक बाना वो किस को जाता है हमको पता नहीं चलता है वो सीधा ऑनलाइन ख्वास सर अच्छा ओ बाकी
0: ना पता है
1: ना पता है जमीन सेलर को
0: पता
1: है सर तू माना सीधा सिस्टम
0: टेंडर
1: में तो माना अति सिस्टम L1 रेट आएगा सु सबसे लवेस्ट तंग ना दो लाख टेंडर थे दो सिस्टम आम सो भाई वो तो बीट जाएगा जैसे यार बीट छी तंग तंग माना देखना दिया यार पता है जिन पहला रेट पुस दू तंग दूसरा L1 आपको आ जाएगा तो L1 को सिपला साहब नजर बाकी चीज जो डायरेक्ट परचेज करने में डायरेक्ट परचेजिंग आती है जैसे जो ही आया पोर्टल पर है ना दिया कैटेगरी भी चीन सर कैटेगरिया यार सपोज आती शोशो चिंग्यो चीन या स्टेशनरी न्यू चीन पेन चिंग्यो चीन कुछ भी हो उधर कैटेगरिया उसे क्लिक बा चीन क्लिक बाना करगी ना सुसुदरी होना उदो शोष है चीन शोष आना खोज खा गाँव रिजनेबल गाँव खोरे मतलब स्पेसिफिकेशन होते देखा क्लिक बस तंग मना दिया ऑर्डर है चीन सर
0: शेविन साहब ता यार 2019 संग लद्दाख दान रियाब ना आते जेम शुरू गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट ने चैलेंज शियो पिंजु जेम बचेस ना
1: चैलेंज ना माना ट्रांसपेरेंसी चैलेंज ज्यादा था सर देम माना मतलब आप मिसुमी करना कोटेशन क्यों से उसमें मतलब
0: ज्यादा मैं हुआ था
1: बिल्कुल इल्जाम भी आता था और क्वेश्चनेबल चेंज हो चुका है कि भाई ये एक एक सप्लायर बार बार आता है छूता इसमें हमारा जो बायर है उसके उसमें हाथ में ही नहीं है ऑनलाइन छाना और सबसे बढ़िया ये है स्ना सीधे यार आरडीटी में पिन इसमें आपका जो जेम का जो ये इनवाइस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पता चल जाता है जैसे सपोज यार दिखे ना यहाँ बायर इन बायर के ऊपर एक डीडीओ आयो डीडीओ बस गेन ला प्राइमरी यूजर को डायरेक्टर हो यार बायर इज दीन ऑर्डर चितांस ऑनलाइन सपोज यार एक प्राइमरी यूजर डायरेक्टर पर SMS चाचिन कि आपके बायर ने ये प्रोडक्ट खरीदा जरे पहले वो पता चलता नहीं था डायरेक्टर को यो आयर अचीवमेंट अभी डायरेक्टर को वहां पता चल जाता है कि भाई ये इस बायर ने आज ये प्रोडक्ट खरीदा तो उसको फोन कर सकते भाई तूने क्या खरीदा
0: क्यों खरीदा,
1: क्यों खरीदा? अगर पता मचाना ना अकाउंटेबल सो दे तूने किस से पूछ के खरीदा
0: बिल्कुल बिल्कुल जो
1: ओ दो सोसिन सर अकाउंटेबिलिटी माना बढ़िया सोसिन जब से ये जेम आए
0: तना जेम रजिस्टर्ड बिजनेस
1: जेद दे सर तंगा जेद दे अभी जैसे सपोज गति जितने गति एंटरप्रेनर लोकली प्रोडक्ट जो दे दोन ला पता मिंदू उनको जेम पे रजिस्टर करना बहुत जरूरी है जैसे गति लोकल शॉल चोखांची होत लोकल
0: खांचियोत
1: उन सबको जेम पे रजिस्टर करना चाहिए खुरी प्रोडक्ट कैटेगरी एक अतंग से खोरे रजिस्टर बार कुछ ताकि गवर्नमेंट लाज के इजीली थे जब भी दिल्ली विल्लिया मेला वेला चाचाना गति प्रोडक्ट स्टॉल लेकर घुसपात अब उनको जेम के युद्ध में मजबूर हो जाता है युद्ध ना कर तो सीधा मना और ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ये प्रोडक्ट वो दीका का तो एड बना सिर्फ लद्दाख साजिन ओवरऑल इंडिया कहीं भी मन साचिन मतलब बेंगलोर का भी करगिल से जा सकता है बेंगलोरी वेंडर बिल्कुल
0: एमएसएमई स्टार्टअप गवर्नमेंट
1: बिल्कुल इसमें ऐसा एमएसएमई सबसे फायदा दी सर जेम यंग एमएसएमई का नाम आते जैसे टेंडर बजते सर एक तो उनसे टेंडर फी नहीं लेना है शुद्ध सर दोनों आचे CDR FDR दोन बिल्कुल MSME एग्जेम्प्टेड

0: अच्छा
1: और एमएसएमई अगर कुछ रिजर्वेशन हो, जैसे कुछ सपोज यार टेंडर फीस टेंडर में ना एंग अच्छा ऑप्शन भी मत एमएसएमई एग्जाम तांची ना मना अच्छा यस ता मना कुछ ऑटोमेटिक जैसे ऑर्डर चियो दे 1 करोड़ी देंग का तो एग्जाम बना कुछ करोड़ ऑटोमेटिक खो अच्छा चीन मना और एमएसएमई हमेशा वो उनके बगैर वहां वहां पार्टिसिपेट बच पर वो दोनों यंग सर्कुलर चीफ मिनिस्टर सर दे भी रिसेंटली एमएसएमई पेंडिंग यकम मन एंजमेंट पेमेंट बिल्कुल एमएसएमई के लिए स्पेशल है माना कोई दी ऑर्डर था हस के नाम का पेमेंट बार हुआ
0: कुर्सी इलाजत
1: बिल्कुल
0: फर्नीचर है
1: बिल्कुल
0: फर्नीचर गति गला गला कंपनी ने आयत गति दी का सुनसे सुमा स्केल इंडस्ट्री शिका तो फिर ना खुश आना फर्नीचर
1: रेस्टर बार
0: हुआ हाँ खुश ताना उदुन रेस्टर बार ना प्रायोरिटी थप चीना हुआ
1: प्रायोरिटी एमएसएमई थप दे
0: एमएसएमई
1: थप चीन प्रायोरिटी अब मतलब जब आप जेमी का रजिस्टर बस होना माना मजबूर दे प्रोडक्ट अगर लोकल न्यूयॉर्क घुसते क्या दे माना खो जेमी का रजिस्टर क्यों मैं दे फिलहाल तो खो रजिस्टर ना बाहर घुस और एक जेमी का सोयल अच्छी होती हूँ दो पता मिल दे जेम लोन भी देता है सपोज यार प्रोडक्ट रजिस्टर बस यार ऑर्डर सो जेमी कहना यार ऑर्डर थो गवर्नमेंट कहना ता यार अपने में सपोज 5 लाख जे मैं दिया ऑर्डर पोता से खो कहना रिक्वेस्ट बना खो लोन आता हूँ जेमी थ्रू ऑनलाइन
0: फैसिलिटीज
1: बहुत
0: फैसिलिटीज
1: है सरकार का जिम का
0: मक्सी जो शेम साहब 20 लाख बजे था जो 3.7 करोड़ अगर का तो ऑर्डर चेक गाते अगस्त 2026 सुपर गति था लें चुक 20 लाख करोड़ गाते गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट बस इन चुक दी जेम थ्रो छा पोटेंशियल प्रॉफिट होते दरे जैसे कि 2019 से शुरू समय छा ये रंग अचूक चीज जेम योंग सर गैप पुना गति दिया बखाने बिजनेस बखाने मीमांग सुनला फायदे की छात्र
1: फायदा देता आज दे फेज दे जे मयों सना आपको जब तक यार रजिस्टर सप्लायर इन मैंने मैंने डिपार्टमेंट ला पता है जमीन जे मेत सना
0: बख्शीश
1: जैसे यार इस मलसा चबा दिया मगर गवर्नमेंट ना बुखोटा चब मेत मना गवर्नमेंट को पता ही नहीं दिया और किसी का मोनोपोली नहीं है सपोज यार सपोज जेमी कची होता ना हर कोई अपना आईडी खोल सकता है ना दुख से चंग परेशानी में बाहर का आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास जीएसटीएन होना चाहिए दया का यार ना दुख से जेमी आईडी फैन चीन छाना जेमी आईडी फैन फला यार रजिस्टर सो कोई मॉनिपुली नहीं हुआ पहले ची होती जेम में चना आता मी चालीस हार घोष पत्नी छाना मी ची चिकित्सा मैंने तो हर बार उसको सप्लाई जाता था अभी वो जरूरी नहीं है अभी ट्रांसपेरेंसी है कोई भी जा सकते हैं सपोज देंगे तीस ना दे ऑप्शन सिस्टम जेमी का ऑप्शन सिस्टम लाइव होता लाइव दो बजे स्ना वो सिस्टम होता नहीं था अभी लाइव सिस्टम है सपोज देंगे टूल टूल पोस्ट पे या बताती रेस्टोरेंट दोन गांव घूमते एमसी हटीन गांव जेमी के तंग सिंधे
0: ऑनलाइन
1: ऑनलाइन जेमी के तंग मना उसमें क्या हो गया लाइव आ गया लाइव से मैंने सपोज एनायत साहब ना बायर को पता है सुस बोली तंग ना एन ला पता है सुसुस बोली
0: रेट बड़े
1: जो जिस दिन एरेस कांस दे ऑप्शन ला ताना एक बायर ला मीन पोथों जमीन यारी सुस बोली तान लो जरे नंबर वन नंबर टू जब तक फाइनल छ जाओ छाना नंबर वन पुस्तक मन यारी सपोज बोली तांस 10,000 एन ला ऑटोमेटिक देना है चीन भाई चिंती बोली यहाँ 10,000 तांस नंबर वन इस मीन हो जमे नंबर वन इस
0: नंबर टू
1: देखना देखना ये यहाँ यहाँ एसएमएस होगा ना यारी बार
0: बड़े
1: बार ना चलो लाइव आ गया ना
0: सम सुपर छह कैपेसिटी ने सुपर छह
1: छह इंच आ गया बिल्कुल मतलब ये नहीं कि ना दुख से वो नहीं मन में स्नाची होती है जाके एक अच्छा जा दे गए हम बोली तां से वो सिस्टम है नहीं अब कहीं भी दिल्ली में हो वो आए खोला दिन सुअल तचा वो दिन बड़ा ही बस मैं अपना बढ़ाऊंगा आराम बस दुखचा देखे यहाँ एस एम एस सोच नहीं ना आपसे ज्यादा और एक बंदे ने लगा दिया देखने यहाँ एरेस गेंद फेर मत छाना आप जरूरी नहीं है एक ऑप्शन फिर यहाँ सपोज दिल्ली अल्लाह शोध न दिया दुख से मायन दे ना वो सिस्टम था कि यहाँ दुई ऑप्शन गारा छा मायन देगा दुख अभी आप दिल्ली में हो बाहर इवन आउटसाइड इंडिया भी हो तो अपना ऑप्शन
0: बेनिफिट था बच्चे जो दरे फॉर एग्जांपल एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हर कोई करता है यूनिट है कि नहीं पता नहीं है
1: तादो दियो सिस्टम होते सर तंग आई एस दे गति गलत एमएसएमई बस है ना उद्यम का रजिस्टर बार उद्यम जेंची की एक पोर्टल है गवर्नमेंट पे ओदे अंग खोस खुरी मैन्युफैक्चर वे प्रोडक्ट पु बार उशी सपोज खोस फर्नीचर इचोना सप्लाई ऑफ फर्नीचर सप्लाई ऑफ स्टेशनरी ची योजना दो उद्यम राष्ट्र बस दाओ एक उम्र पिन तांग अते हस के टेंडर फिन सन रचिन भाई दू मैन्युफैक्चरर उम्र कोशी छान मैन्युफैक्चरर मना उद्यम सर्टिफिकेट उपना एक अरबी सोचिन छान हम उसको एक्सेप्ट करेगा मगर खची ची बे दू मारा राष्ट्र मबा देचो योद जने दो मायन दे फिर कोई प्रूफ तो होना चाहिए
0: उद्यम रजिस्ट्रेशन पर बस ना
1: बस
0: ग्राउंड का माने मैच धरी फॉर एग्जांपल
1: दो गलत छों दे इलीगल
0: दो लाख चेकिंग ची छाता
1: दो ना वही तो देखो का इंडस्ट्रीज ला सपोज ना टेंडर

0: फिंग्स जेमी का टेंडर फिंग नांगाचा जर्चिन उद्यम हो मतलब एमएसएमई होना चाहिए और उद्यम रजिस्टर होना चाहिए खुद दैट्स व्हाई उद्यम रजिस्टर पुने छो में दे वो पोर्टल पे होता है ना दैट्स व्हाई सुस्ता जिनको इंडस्ट्रीज पर सत्ता से मैंने खुद ताचा
1: है पूरा वेरिफिकेशन बस
0: में ताचा में दे मैन्युफैक्चरिंग दो मेन मांग अच्छा बरगा अगर का तो हमको लगता है
1: शक होता है
0: शक होता है इंडस्ट्रीज द चिट्ठी पे ड्यूस एमएसएमई दी मैन्युफैक्चर इन आज मैंने कौन सर्टिफिकेट ताचा दे इन या
1: अल्टीमेट अथॉरिटी ने इंडस्ट्रीज सो बिल्कुल शेमी साहब ता दिया जेम गाते गवर्नमेंट हिसाब करते लद्दाख यहां डिस्कस बाजू यहां से अर्टिस्ट बाजू की मतलब आर्टिजन ने सुनसे सुनसे चेपो
0: लाखा देते सर हमको अभी प्रॉब्लम हो रहा है सर्विस में सर्विस जेम का सो मिंदु जैसे सर्विस मीन रेस्टोरेंट पा जन तंग आपका इवेंट मैनेजमेंट बखान आपका लोकल जैसे आर्टिस्ट वर्टिस्ट उन सबको रजिस्टर करना चाहिए सपोज दे आकाशवाणी इन या सो इन दे गवर्नमेंट फंक्शन आर्टिस्ट अब हम जेम पे देखता कोई है ही नहीं युद्ध ना आचे सीधा खो सर्विस देने आता खूँ डायरेक्ट हायर बस एन दे क्यों परेशानी नहीं होगी देखो सगा रजिस्टर बार
1: गा सर्विस गवर्नमेंट लर्गोस एनजीओ की नो संभा ना
0: इवन अति लोकल थैला वेला चौदह सर जैसे मतलब
1: रसी
0: थैला चौमिन घोषणा यंग जेमी कमेत पना हमको मजबूर होता है बाहर से खरीदने के
1: सो सो
0: दोन का तो योजना डायरेक्ट सो दे डायरेक्ट परचेस हो जाएगा रुपया
1: सेल्फ हेल्प ग्रुप चो उनको
0: मसला ये पैन कार्ड और वो होना चाहिए जीएसटीएन देख रहे हम ना वो रजिस्टर कर सकता है देख रहे हम ना खो रिक्वेस्ट बची खो प्रोडक्ट होता कैटेगरी में इतना जेम पर रिक्वेस्ट बार दूचो आइन ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये मेरा प्रोडक्ट है काइंडली रजिस्टर री प्रोडक्ट को कैटेगरी चूसता हूँ जेम चिट्ठी था मैं खुद चूसता हूँ
1: तना दियो सुन दे खची जीक से दे जीएसटी फॉर एग्जांपल लास्ट पर कम छोत जीएसटी का दो जीएसटी चो जीएसटी एन चो ना जीएसटी का दे छियो मत
0: आ जीएसटी देखो जीएसटी इस काम मामा नरगोशे में दे दो सो कंफ्यूजन है
1: जब तक कंफ्यूजन
0: कंफ्यूजन दे देगा जब तक जीएसटी एन तब भरना है जब आपको कोई बिजनेस होता है या कोई ऑर्डर चित होना मन मत होना जीएसटी एन पो खाली और नील रिटर्न बस कांस कांस है बस मैंडेटरी इन दे नील कहां से भरना है उसमें क्या है ना कोई का पहने पहुंचा मैं अपना पोर्टल से रजिस्टर करना है फीस से ना नील कहां से ना आगे तक मैंने चफ होगा नहीं माफ हो दे
1: बिल्कुल जो ता फ्यूचर ही हिसाब का सम बताना जो आखिरी का तंग तंग वक्त पंग दो खंड जो चाहना गचो सर जो डिजिटल प्रोक्यूरमेंट डिजिटल जेमी सिस्टम पोस्ट प्रोक्यूरमेंट दो ना सुनते बिजनेस सारी पार्टिसिपेशन पो गचो एरान सर दूनी फ्यूचर पो गचो चीयो फ्यूचर है नुक दो ना दूस प्रोक्यूरमेंट सिस्टम पो इजी गचो अबेरे या बुक या आगे यंग फर्दर दिया नुक तरक्की हो नुक दे संबेक या दे यरां चंग फ्यूचर विजन जी थोड़ा तब
0: दिया रिलाज बेस्ट जेमी का यरां आज़ज दे पे जेमी का हर साल अपडेट छिन दुशिन उसी चीज़ों को जेम पे मतलब स्नाय उम्मत पिन नेहत साहब यरां मन आया अनब्रांडेड प्रोडक्ट जरे मतलब किसी को भी एड करके दे देता था दे दो कुलिया जेमीज बन बसिन शायद चार पांच दिन नफला अनब्रांडेड जरे मन आया जेमी का यहाँ अब रंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मीन तंग से प्रोडक्ट तंग से मैंने एन जे में दूसरा सिस्टम ब्रांड पुचोर से दे सिस्टम में इनायत साहब ओएम जरे ओएम जब सबसे बात यारा गोदरेज यारा जब तक गोदरेज यारा ओएम तंग से मैंने खोए प्रोडक्ट को यहाँ जेमी का अपलोड बाय जे में सपोज जेनविन सपोज यार इस डिपार्टमेंट चीज भाई हमको गोदरेज या मतलब स्टेशनरी या एसी हॉट एंड कोल्ड एसी एलजी हॉट एंड कोसी खोजता हूँ अब आप क्या है आप बायर है ये समझू तुम आज दर्शो तमाम एंजेमेंट आपको जे एल जी पंगा जबर उशन भाई ना जेमी का रजिस्टर हो ना चार दिन फिर ओ एम तो एल जी फिर वो आपको क्या देगा ओ एम देगा नहीं देगा यार प्रोडक्ट को यार बायर पो एड बाय चीन देर गया अपना जो सेलर ला प्रोडक्ट पो एड बाय चीन देगा ना बायर ला दो थो चीन वैसे तो मन दसो तंग मामा दे
1: अच्छा दिखेगा ही नहीं
0: दिखेगा ही नहीं कारगिल में वो प्रोडक्ट किसी को जिसको जनवन है उसी को ही दिखे
1: ना फायदा सुना अगर फायदा प्रोडक्शन मिले
0: चीज मतलब जनवन प्रोडक्ट ले और जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा
1: मैं जो है चीची गाते फॉर एग्जाम्पल फ्रिज एसी चीची कुर्सी कुर्सी गाती चीज चीज का तो चौधरी ब्रांडिंग बस एक आओ बच्चे सुनो खेल
0: लेते हमको वो मेन वही जरूरत होता है ना अति लोकल एरिया यो पना आता इजी चेंदू क्यों अब बाहर से कहीं आता है खो हंस के प्रोडक्ट को जोखता वहां मुश्किल चेंदू खो टीआर जो
1: सर्विस
0: सर्विस हंस की चीज छक में क्यों माए ना मैं देखें अच्छा दे

माना टेंडर भी ना मैक्सिमम वर्गा खचिया लोकली सर्विस स्टेशन दी कयों मजर भी इंजर था मैं नची चेंडो विनायक साहब कि लोकल का तो मैं ना दे निजी तंगा था कार बॉम्बे ने दिल्ली फोन बंद हुई तो वो सब है सर जेमी बहुत चीजें हो जेमी का गाती आपका आजकल सर्विस जेमी ना गाती आउटसोर्स गाती एम्प्लॉयज दोन गांव जेमी के चेंडो इवन गाती ऑक्शन उनका जरा आंसर दे गाती चाम से ऑक्शन चेंडो ना वो सब आजकल जेम पे चल रहा है तना दोन गांव में रेवेन्यू सरकार लाए हो चिंदे जितने जीएसटी उस पर लगता है चाम से जेमी का छाना तीन गांव में जीएसटी सरकार ना होंदे दिस जीएसटी फायदा है अंगता गवर्नमेंट ना लोग सुनदे हर चीज का फायदा है ये सरकार लांग सेलर लांग बायर लांग सेलर लखुरी सामान पर गुट बायर लखुरी टाइम का प्रोडक्ट पर थोसे टाइम पेमेंट बोस और इसमें पेमेंट सिस्टम बहुत जरूरी है ऑनलाइन है दीन यारी एकदम पता है जिन ये प्रोडक्ट पर दी बिल चमता मैं जो और अगर हफ्ते नहीं बना यार सेलर इस बायर का आप इंसिडेंट राइज कर सकता है

فخسخ بلن خدای فدر چنلو تون چوزخ نمیا.

95 पर्यंतच सामस्त किंगेन निपिन हाजी महम्मद हुसैन बाबीकना मिडोमिका दिवाकाशवाणी करगिलिन मीडियम 1584 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामिन अब से लेकर रात के 10 बजे तक आप हमारे नशरियात मीडियम 1584 किलोहर्ट्ज, मीडियम 684 किलोहर्ट्ज, एफएम सावा शहर 1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप हमें सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मीडियम न्यूज तोचिकना गबियाना किलोहर्ट्ज, मीडियम न्यूज टोगियाना किलोहर्ट्ज।

होने वाली उन शाक सब्जियों की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता जो बिना किसी हानि के हमारी अनेक बीमारियों को निर्मूल करने में सक्षम हैं। प्रकृति जिन शाक सब्जियों को उदारता पूर्वक उत्पन्न करती है इन्हीं में से एक विशेष उपयोगी वस्तु है गाजर। गाजर को उसकी प्राकृतिक रूप में ही अर्थात कच्चा खाने से ज्यादा लाभ होता है। गाजर स्वाद में मधुर, कसैली, हृदय के लिए हितकर, रक्त को शुद्ध बनाने वाली, पुष्टिवर्धक, दस्त को बांधने वाली, मस्तिष्क एवं नस नाड़ियों के लिए बलप्रद है। ये अफारा, बवासीर, पेट के रोगों, सूजन, खांसी, पथरी, मूत्रालपता तथा दुर्बलता का नाश करने वाली है। गाजर के बीज पचने में काफी भारी होते हैं। कैल्शियम और कैरोटीन की प्रचुर मात्रा होने के कारण छोटे बच्चों के लिए ये एक उत्तम आहार है। गाजर में आंतों के हानिकारक जंतुओं को नष्ट करने का अद्भुत गुण है। इसमें विटामिन ए भी काफी मात्रा में पाया जाता है, अतः नेत्र रोग में भी लाभदायक है गाजर। गाजर रक्त शुद्ध करने वाली है। 10-15 दिन केवल गाजर के रस पर रहने से रक्त विकार, गांठ, सूजन तथा पांडुरोग जैसे त्वचा के रोगों में बहुत लाभ होता है। गाजर में लौह तत्व भी प्रचुरता से पाया जाता है। खूब चबा चबा कर गाजर खाने से दांत मजबूत, स्वच्छ और चमकीले होते हैं तथा मसूड़े मजबूत होते हैं। गाजर के रस का नित्य सेवन करने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर होती है। गाजर का सूप दस्त होने पर लाभदायक होता है। अरुचि, आपच आदि रोगों में गाजर के रस में नमक, धनिया, जीरा, काली मिर्च, नींबू का रस डालकर पिए बहुत लाभ होगा, लेकिन ये प्रयोग 2 माह तक अवश्य करें, तभी आपको लाभ दिखाई देगा। पोषक तत्वों के लिहाज से गाजर एक अत्यंत समृद्ध खाद्य पदार्थ है। ध्यान रहे, गाजर को छीलकर या खुरचकर नहीं खाना है, क्योंकि गाजर के पोषक तत्व छिलके के नजदीक ही होते हैं, जो छिलका खुरचने पर बाहर निकल जाने से शरीर को नहीं मिल पाते हैं। गाजर को बिना छीले केवल धोकर साफ करके उसका रस निकालकर पीने से बहुत लाभ होता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो गाजर का रस बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए बहुत उपयोगी है। गाजर चबाने से मुंह में लार ज्यादा बनती है। इससे जरूरी एंजाइम, खनिज पदार्थ और विटामिन मिल जाने से भोजन शीघ्र पच जाता है। यदि भोजन करने के तुरंत बाद एक गाजर धोकर खूब चबाकर खाई जाए तो अन्य लाभों के अलावा मुंह के कीटाणु शीघ्र नष्ट हो जाते हैं तथा दांतों के मध्य छिपे भोजन के कण भी बाहर निकल जाते हैं। इस प्रयोग से दांतों का हिलना, मसूड़ों से खून आना भी रुकता है। गुर्दों और मूत्राशय को बल प्रदान करने में गाजर का महत्वपूर्ण योगदान है। गाजर का ताजा रस अल्सर और कैंसर जैसे रोगों में कमी लाता है। ये सभी प्रकार के संक्रमण को रोकने में मददगार बनता है। कुछ लोगों को अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, ऐसे में एक प्रयोग करके देखें। गाजर के रस में पालक का रस और थोड़ा नींबू का रस डालकर पीना चाहिए। इस मामूली से उपाय से कब्ज दूर हो जाता है। गाजर का उपयोग कच्चा खाकर, पकाकर या उबालकर अथवा सूप बनाकर या फिर रस निकालकर किया जा सकता है। इतने सारे लाभ हैं गाजर के, आप भी उपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए।

0: टॉर्चर में छार बस एक साफ सुथरा और पीसफुल माहौल छे अनुखों जाक से साफ आने कोशिश बचा मेथोडोलॉजी ताम से साफ ताम तरीका जरना तो हर टीचर का खुरी का डिपेंड छे जमे खा क्योंकि क्लासरूम में नंगोस पे टीचर पुला द किंग ऑफ द क्लास सिस्टम है आज ना खो खुरी मेथोडोलॉजी में खमे ध्यान छे चिकित्सक सब खान पुचा मेन मा बल्कि खो खुरी खुरी तरह पे का गजल्ला फजदो सब सब चस पो खुरी तने बांगन छिन मगर अगर दोस्त का तो मियो मन अगर गा टीचर से ध्यान कमी होना ध्यान खेल मखेल बाखोस दुन लबिंग से बाकी उनके ना मदद लेने चस्पो बेहतरीन है ना कि रंग गलत तरीका चिकित्सक सूची की जिंदगी बर्बाद छा बसा बाकी मेथोडोलॉजी सब इंटरनेट ना यूट्यूब ना बाकी मता ट्रेनिंग जाना जा मता खुदा शर्जे का दरे माने डिपार्टमेंट आनो हर देन दी ट्रेनिंग थप चेंज वेरा आज ना हर तरीके ट्रेनिंग थप चेंज हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो चेंज छाना दुने आनो माने शौक बसे ट्रेनिंग लेने रा मेथोडोलॉजी ने आनो इंप्रूवमेंट बसे साफ्ट आउट चेंज वेरा
1: बक्सी यो छरेगा तो सर दोन जी मलाय रे स्टूडेंट ला है जुगा ते प्रोजेक्ट रे वॉल पेंटिंग रे मॉडल रे उदुन सक्सेस को गता साम सिखा छने जो
0: अच्छा वॉल पेंटिंग मॉडल जरे दुन माती को करिकुलर एक्टिविटी हिस्सा इन जों अता करिकुलम नि जों छने राज ना फ्रुनला चिक चिक एकेडमिक करिकुलम पो जो की माने मेंशन बस हो दे सिलेबस सब दी दी सब सब चेंज रे किताब हो दे टेक्स्ट बुक था जो एग्जाम्स वगैरह छेद को इम्तिहान छेद दो मेन में हिडन करिकुलम जर खान छों छने राज ना दो अता स्पेसिफिक दीदी चीज सुल सब जरे छ मेन बल्कि दे अनुक माने टीचर खुरे स्कूल एनवायरमेंट हिसाब का फ्रू खुरा दे हिसाब का गच चीज के इंट्रोड्यूस माने दे पेंटिंग ये सब अच्छा जो बाकी चीज कल्चरल प्रोग्राम ये सब अच्छा फ्रो स्टेज फोबिया खत्म बचा पब्लिक फेस बचुक चा पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी खुरा नो गुक चा दो मेन मा बाकी लॉजिक रीजनिंग कोई बड़ाई छ चुक पिया जो दे तो सी कोई डोमेन मांग में ऑप्शन दे जो डेवलपमेंटल डोमेन मांग में ऑप्शन है राजना कोई फिजिकल डोमेन ऑप्शन कोई मेंटल डोमेन ऑप्शन कोई लैंग्वेज डोमेन ऑप्शन जो इंटेलेक्चुअल डोमेन ऑप्शन दी डोमेन उन गांग मा तरक्की छ चुक बिदुन गांग में इंप्रूवमेंट ऑप्शन पे एक्टिविटी चाम से सब ना टीचर इस गा तरीके का सब ना स्कूली एनवायरमेंट ना वेरियस क्लासरूम ना एकेडमिक कुरान सब ना या एकेडमिक वेरियस सिलेबस पो दे ना स्कूली सब्जेक्ट वेरी स्पेसिफिक चैप्टर पे हम सिर गैप ना अलग टाइम फिंग सेल सब ना या ये सैटरडे सैटरडे सब ना गजल सब ना तो यहां सब है जिन जिन गांव में को करिकुलर एक्टिविटी हम चीज ना मन चीज चर्चा में दोन सब चा जरूरी है जो टेक्स्ट बुक नहीं है किताबी एलुम पुने है बुद्धि एलुम जरूरी है
1: चैनल दरे मॉडर्न एजुकेशन यह जो ना तीव्र शून्य अंगतां सांसिक फरक रिक्त हों दुख सर पहला से बसे
0: मॉडर्न एजुकेशन यह जो दक्षा बिल्कुल फरक माना मामू जो फरक जरना का तो जैसे ना दरे युद्ध पी दें ना उगां मसनाल ना चीज पीन जरना आता किताबी के ज्यादा आता है मियत पहुंच में किताब पीन दरे दी बुकिश एजुकेशन पे कोले खत्म छेन चिक दरे बैकलेस कोले कोले बुकलेस अंगिर जैसे ना का तो डिजिटल सोहार चीज दरे फोन ला यहाँ पता दुख तुक टेबलेट्स वगैरह गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट बने चेज ना का तो दू चूस खुआ दी एरे मिंग ने तैयार बस यहाँ स्ने नाम जानो दस उस वक्त चिक सिंपल दे धुन पुल किताब चिक ध्यान दरे विंडो चिक बस देखना यहाँ दुनिया गांव में इंट्रोड्यूस है दरे दुख से अमेरिका ची हालत हो चाइना ची हो जापान ची डूनी नजर खान पाओ खेल अखिल पे गया छाना पूरा डिजिटल एजुकेशन है बता से मॉडर्न एजुकेशन पो डिजिटल एजुकेशन है बगैर अधूरा है छाना डिजिटल एजुकेशन ही ज्यादा दक्षता देने दे जुआ छाना फ्रू गांव में स्कूल ने आए ना कहता स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट क्लासरूम है खुआ किताब पूछे गए मैंने बल्कि शौक भी अनुक चैप्टर से अनुक खुआ एग्जाम मिसाल ची ची खुआ मशहूर ना दे मिसाल पू तरीका शुई का तरीका निशुई का फ्रू समझे भाई इन चब चेज ना दरे डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम हर स्कूल यानो के अवेलेबल है और कोले कोले मेथ खानी जगह ना दरे कोले कोले गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूट बेनो छाना ना सी तालीम तामी तरीका ना तालीम लेन में तरीका ना दरे सी तालीम तामी तरीका ना तालीम लेन में तरीका अनुक मरा काफी फर्क
1: कंप्यूटर एजुकेशन का
0: कंप्यूटर एजुकेशन करना तो हर चीज को कंप्यूटर मैं हर चीज कोई तालीम जरिए कोई बाकी को करिकुलर एक्टिविटी बारे में दुनिया की खबर जरिए रहा साइंटिफिक डिस्कवरी सब जर चीज ना कहता अरे यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल देना सकम माता यूट्यूब ने देना अवेलेबल है जो कि माता घर खोल माथो खानी चीज आता मरीन लाइफ फोन ला समंदरी जीव जंतु से लगो निभा देसी खतरनाक सिर्फ किताब नहीं मीनिंग आता था बल्कि दे लाइफ उनती मिक न रहा मिक इस थों से एक्सपीरियंस बचा तजुर्बा बचा उस पर सोचिक किताब में सिलचस बचा मैं छाना दो गांव में आता हूँ ना पता शायद दी कंप्यूटर ही ना इंटरनेट ही मदद की चल और इंटरनेट टूल चेस फिलहाल डिजिटल दुनिया है अनुक ठीक ठाक बस जिंदगी बचा से मीना कंप्यूटर एजुकेशन तो जरूरी जब तक हुआ कंप्यूटर का होल्ड में तब तक हुआ डिजिटल दुनिया है उन्होंने फायदा लेन मैं चमेन छाना युद्ध तालीम ही दरे कम से कम मन मैक्सिमम दिन दाऊंगा शिफ्ट को डिजिटल दुनिया से छेनो छाना फ्रो बेसिक कंप्यूटर सब से मैंने खुआ दक्षा सी दौर पे मुकम्मल तालीम थोबांगा मना पॉसिबल शिक्षा समेत।

0: ngati kargil de education system pa ga chuk shik chore sar de school jena
1: kargil education system pa ma sa la rang chori no dare ngati आस पास उत्खनी स्टेट मुकाबले के लग बगे उनसे कही लाम खची है मैंने दोन बसा आगे माशाला एजुकेशन पो दरे मैंने मॉडर्न सोसेन और स्नान लाती फार फ्लंग जगह ने स्कूल दोनों के टीचर अवेलेबल मेत पिन या फिर जगह खचे स्कूल खुना अवेलेबल मेत पिन दरे हर जगह एक तो ना स्कूल अवेलेबल हो स्कूल एक्सेसिबल हो स्कूल यो चाव ना स्कूल एक्सेसिबल हो चाह फर्क जगह खचे या स्कूल यो रोड में पर यहाँ पर दक्षाती गर स्कूल यो दोनों का रोड अवेलेबल सोसेन अच्छा जो दोनों आती दस स्कूल निका मॉडर्न एजुकेशन स्मार्ट क्लासरूम दोन साल दान डीजी लैब एस्टेब्लिश सोसेन कंप्यूटर एजुकेशन बाकी चीजा नामा स्पोर्ट्स मटेरियल कंपाउंड वॉलिंग स्कूल यौचिन स्कूल ची खचिक फार फ्लांग जगह खचि लू से दुख तुक मगर ज्यादातर स्कूल निका मान अदन छाना दूर ओदी हिसाब पिका करगिल एजुकेशन स्टैंडर्ड वो दरेगा हिसाब पिका काफी पॉजिटिव सरत
0: ट्रेनिंग प्रोग्राम ची है जो गवर्नमेंट टीचर
1: बेशक ट्रेनिंग प्रोग्राम मन हर टाइम डुलचिन जो हर टाइम डुलचिन ध्यान सिर्फ सब्जेक्ट चिकता में बल्कि साइंस खुड़िया अलग स्पेसिफिक ट्रेनिंग योचिन सोशल साइंस अलग योचिन मैथमेटिक्स खुड़ा अलग योचिन अच्छा लैंग्वेज ना लिटरेचर अलग योचिन दो आता बाहर ना तुश पिन बाहर ना ट्रेनिंग ट्रेनर बाहर ना खेमर पोस पिन स्पेशल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बारे ने खेमर पोस पिन दरे माशाला अति देना खुड़ी अनुना अति टीचर्स मोहम्मद होना स्नान लखो अधिक ट्रेन सोसिन दरे डाई टू डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एना थोड़े छूत गए दे छाना टीचर्स आ देना ओदे कहता बार बार ट्रेनिंग भी चेंज हर सब्जेक्ट में अलग अलग ट्रेनिंग भी चेंज यहाँ तक कि विंटर वेकेशन पे दरे आम मी नजर आनु विंटर आनु मैंने बंद छका जी में था लेकिन पूरा थ्रू आउट द विंटर ट्रेनिंग डुल चेंज टीचर्स पूरा ट्रेनिंग और बारी बारी के ट्रेनिंग डुल चेंज और दीची के रहा थोड़े समर वेकेशन आनु समर वेकेशन आते समय दाम समय की टीचर्स समर हॉलीडे छाना समर पूरा आता ट्रेनिंग डुलिन टीचर्स ला डाई टिका हालांकि यू मेन की मतलब 6,000-7,000 टीचर गाँव मालसी के ट्रेनिंग तमाम मुमकिन छाना ध्यान उतना बारी बारी का टीचर्स हर बेश अनुक 70 टीचर्स 70 टीचर्स 30 दिन अनुक 10 दिन अनुक सामचिक टीचर्स यहाँ 2,000-3,000 टीचर्स लगा था समर वेकेशन दोनों विंटर वेकेशन बार बार ट्रेनिंग छाना दी ट्रेनिंग सिलसिला कंटिन्यू रूशन ट्रेनिंग में ना तो यंग जंग छात्र लगा ती जहन खानी एलम पो एरस नल नमल दे पेडोगोजी तम टीचर्स साग तम तरीका दी में ठहर लीजिए अनु बार बार इम्प्रूवमेंट हो माँ बार बार दो बूस्ट अप जरूरी छाने दी फिलहाल ट्रेनिंग जरूरी और ट्रेनिंग लगातार सचिन जो
0: छने का तुन है संगता तेलम में थर्ड पे का था फुल अचाम से हगो छेंदु से तेज को लेने का
1: बेशक मैं बेहतरीन मौजू चेज ना टीएलएम ना टॉय बेस पेडागोजी दी डोमेन पुखरा ना अंगरा पर्सनल यंग जुमेत कनेक्ट दे रहा था चेज ना अचा दिया मौके सो में की बाहर लसों से दी का अजमेर ला अचा ट्रेनिंग चेगा रीजनल इंस्टीट्यूट ला टीएलएम डेवलपमेंट ट्रेनिंग सोमेन ध्यान ट्रेनिंग पहुंचा दी रहे टीचर्स छाना तो टीएलएम डेवलपमेंट ना दी टॉय बेस्ड पेडागोजी चौस अहमियत मन खतरनाक अहमियत जो चेज नगा चीज ये रेस खो फ्रो वर्बली समझाए पे ओरल तरीका ये जबानी दे चो जरे दू जर चेस पे फुई दुन पोस्टो से खुरेज लप्पा थुक से खुरेज प्रैक्टिकली दे चीज पे खुरा शामिल से खुरी जहन को इस्तेमाल बसे खुरी मिक को इस्तेमाल बसे खुरी लप्पा ने इस्तेमाल बसे चोखान पे आसमान जमीन फरक छाना गा चीज ये रेस मिसाल के तौर पर खुआ ये रेस दफसंग चौक ची मिसाल फिलेस विंड एनर्जी समझाई बचिन का तो शोक भी अनुदेचो लाइन चिक या पेराग्राफ चीज चुप बसा दी के विंड मुखवा दे प्रोजेक्ट चिक चोर चुके दो इस्तेमाल बस दे लू इफेक्ट बुखवा थो चुका महसूस सचु दो छचस्पो माना जुमेत हजार दर्जा बेहतर दे तो हर लेने आए जो है टीएलएम पो टीचर इस दून पर क्यों से समझाई बसे सब चस्पो छाना दी के नाज दिया ना दी रेडियो प्रोग्राम जरिए कहा दियो जरूरत की टीएलएम पुना टॉय बेस्ड पेडागोजी और जैसे फरक अच्छा ना दो अच्छा देना खुरी हम लोग ट्रेनिंग उन्हें समझे भी कोशिश बस में टॉय पुजरने का तो गांव लोग फू खुरा इन्वॉल्व छचिन जो है फू खुरा दे चीज पुने वो शामिल सो सको यहाँ स्पर्श सचिन टीएलएम पुजरने का तो टीचर पुज खुरेस टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षो से ना दे टीचिंग लर्निंग मटेरियल पो खुरेज इस्तेमाल बस फून ला समझे बचिन दो इन टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल ए टॉय बेस्ड पेडागोजी चीन जन का तो दो चौकसी चीज गेरे टीएलएम शिक्षो चीन जिसके साथ फू खुरा इन्वॉल्व होते हैं स्पर्श चीन बस चंदी चीज इस पे फरक दे चिचिक पो समझाई बे मिंगना इस्तेमाल बे टीचर पुस चिची को फू खुरा आता है स्पर्श है खुरेज चक ना चोक खुरेज जक ना चोक खुरेज ची बना बोल दे चीज पो छाना दो हजार चीन टॉय छाना दी टीएलएम पुना टॉय पे आंसदा शिक्षक से फरक मगर यो चाव इसका टीएलएम डेवलपमेंट ही अंडर रहउछिन टॉय बेस पेडागोजी घुरी दी पोर दी देन दी अंडर रहउछिन दे कांसेप्ट पे अंडर रहउछिन
0: बक्सी बीइंग ए टीचर सर ये री सु रोल मॉडल दफ सकते गया इंस्पिरेशन जी सुलु सिने सर
1: बक्सी जो दफसन सख पाची आ सुनते जना पढ़ाई बखने टीचर्स मने मामो जो दानो मैम सईदा है मैम

0: इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं।
1: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
2: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
1: And Department of Science and Technology, our TST.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
3: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिख सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया कैम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके ये बदलाव किसने किए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्कूलों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति के मसौदे पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सरकार देश के शिक्षा तंत्र में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को एक अहम हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को स्वीकृति दी। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में भी कल तक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility, exchange of young professionals and cooperation in

0: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: Hey girls, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है, अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहे।
5: तीन महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ
6: और कल होगा भी नहीं।
7: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
8: ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं।
7: और RBI कहता है, अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे।
9: और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के
7: और फास्ट बोलिंग से भी। RBI कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहे।
10: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
11: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: na san sak payan te shine ga za ring ne ne pi medium ka du akash wani kar gilin wax po tu so tug na fe tsong so ka sa ta program ne maza sagit pa ni fya program phu chi khan pain kanis fatima program producer pain guzar husain
1: qr code scan karo 5000 ka cashback pao wah din ban gaya fasa
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI इससे बेहतर कुछ नहीं
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

दक्षणे महंगाई स्कोल्ला नमजेल तालुक स्पॉन्ग अभ्यासों भारत न कनाडा दरी न फल्ला का इटावा चौकसी एक्तिसादी लखथुती खुरी छत छमजदो सी पे स्कोर लखे रेसी सिरी स्पेरा लखु सुख बस चियाजर न युलिंग स्कू एतोन पु दी छोंगलेनी छत पु सना लोस्तोंग इस न चुजद्रुगी लजुक छुक प घर गया बचाओ इंजरेन युलिंग स्कू छोको स्पेरा तंग खनुनी गोयोत्यांग दी जगमा गा पस पेरा उन दिल जे और गु छुक पा डुलेंचिक लुशा इंजरे अजर सेट दुनमत सिरी स्पेरा उन नई दिल्ली दुनमल जे चुप गदला थमा थोन खन इनमिन गवेनाल जोंस ऑफिसर उन्नीस खक्चन छमजो चिगे के छोसला छखन लक्षे सुने कस नमान सक अशक पसों अमरीकी मखमिस किश्ती चिगे का हमला बसे इंजरेन दी किश्ती उकीब्रियाई समंदर प्यांग रस पे चला गुन खिर्चन खोचा सिमी न लज बेंचिक यो तेंजरे असर बसों गवैनुक मिंगज भी स्ट्रोक न सोखन इनमिन लातीनी अमरीकी अनुक और रस पे चला गुन गैर कानूनी जोस्ते का खिर्चन खोचा से लोक पाला ट्रंप इंतजामी छोस नस्तन पो डुलनियत खान मुहिम पे नाल जो दी हमला उमलियानु खो से इंजरे असर बसों अमरीकी जुनूबी कमान नजम से दी किश्ती उलास स्मगलिंग बेलम पेंस तस्नबा से हम लबस यांश मखमिश दी किश्ती अनुक रर रोस पे चला गुन युद पिंजर भी छिपजी तांचस पे कना घर के बसे लक लेनेन वजीर अजम नरेंद्र मोदी मीमा से खदमती लोंगी शुरचा घर गया छेंची की होते जन सेवा से देश सेवे मंत्र नंग अच्छन अर्थियां पो नंगें बो दी बैसा उदन लाभिंग एंचिक यह ते इंजरे असर बसों गाउन दक्षन इन नसंग डुलेंचिक यह ते इंजरे अजर इन सेवा ना सुशासन इखो इन नजरिए कन शेस लेंचिक सरकार इस सना लोस्तोंग इस नंग इशिंग इस नर्दुन छुपा विकसित भारती तोन पुल्ला गैनो क्यों मिमिंग न लजबेंचिक यह तीन जरे असर बसों घुरी फैसपत सिर पे नाजोंस नोएडा म्यूली नंबरे लड्डा उस गत सोचला उत्तर प्रदेश नंगेंबो उस गया स्त्री नक्शा वाला गिरजा क्यों इंचिक दुख देश को लर्न रोबस्टर तक्षपा छे इंचिक यह तीन जरे अंग असर इन मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इस भारत न अमरीकी बरियांग छोंगलेनी छमजदी मिंग नस्पेरान छोमसेन नई दिल्ली म्यूनिख लीडर ने ग्रप्स प्यांग समझून सकून चुगेन मोहतरमा सीतारमन इस युल निस्का खकचन छिर्चिगी का लेप से इंजरेन छोंगले नील चित पूछोगो थिक चिक छुकपा भारत हागैनुक यो ते इंजरे असर बसों खोजांग स्पेरा तांचास पुस युल गामी अनुक ब्रिमोन न ग्रिप्शा तुनसक फल तिबे फिला लेगी ना लक्षेप्शन प्लेटफॉर्म चिगी जोस्ते का लस बाद जर्यांग असिरीन कसता खबर निशांसे के नमजे स्कोर ला दिरिंग करगिलो आंगी मा नमजा उथांसरु जियां दिरिंग इंगिमी छाती थिक पु करगिलो आंगी शुर्चाब्दुन एश्यारी अगा डिग्री सेल्सियस दाना चोसला गोंदे छनी छाती थिक पु उर्दून एशारिया चिक डिग्री सेल्सियस तखनाबस लैदरी इंगिमी छाती थिक पुंग इशु चकनी से एशारिया अश्फी डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे छनी छाती थिक पुश भी एशारिया अश्फी डिग्री सेल्सियस तखनाबस द्रास लैदरी इंगिमी छाती थिक पुंग इशु चकसुम एशारिया अर्गु डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे छनी छाती थिक पुंग इस एशारिया अगा डिग्री सेल्सियस तखनाबस पदुमा दरी इंगिमी छाती थिक पुंग इशु चकसी एशारिया अर्ग्यार डिग्री सेल्सियस यांग गोंदे छनी छाती थिक पुसुम एशारिया इंगिस डिग्री सेल्सियस तखनाबस खलाचा दरी इंगिमी छाती थिक पुंग इशु एशारिया चिक डिग्री सेल्सियस नगोंदे छानी छाती थी कुर्गु एशारिया इंगीस डिग्री सेल्सियस तखनाबस जिसकी नुब्रा दिनी इंगीमी छाती थी कुई इंशुर सजफी एशारिया गा डिग्री सेल्सियस नगोंदे छानी छाती थी पुत्रुक एशारिया इंगीस डिग्री सेल्सियस तखनाबस गिलिल लादरी इंगीमी छाती थी कु सुमचु सोगनीज एशारिया त्रुक डिग्री सेल्सियस नगोंदे छानी छाती थी पु चोगा एशारिया अर्दुन डिग्री सेल्सियस तखनाबस यांग स्कार्दो दिरी इंगीमी छाती थी कुई इंशुर सजरुक एशारिया त्रुक डिग्री सेल्सियस नगोंदे छानी छाती थी पु चुक्षिक एशारिया खा डिग्री सेल्सियस तखनाबस लजुक पेगा खबर उन्नीस सिरपुला यहां सिरपचिक नियन मजद वजीर अजम नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड सदर नंगेम्बो तांसफियोसिंग स्पास पेरा अमरीकी मामिस किब्रियाई समंदर यानुक रोस पे चला खुरियोत खन किश्ती ची का हमला बसे तांस मिंगज भी स्त्रोकना चीफ सेक्रेटरी लदाख आशीष कुंद्रा जंसकारी खुरी जखमंग इस पास इस कोर्प बस गार गया दुना खेर सी जखमज भी पास सी सी का पोलो टूर्नामेंट पुदरिंग शगरन पोलो ग्राउंड शुशोद ले थन थमा दिन इनमें दरे सकपे पुरगी खबर उन गाइजिन शजदे बोस यशु खुदा नर सामानी फकरियां

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर रखा।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: तेरी वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: नगर की। इस प्रोग्राम के बारे में इंस्टीट्यूट के चेयरमैन इंजीनियर फिरदौस अहद भट्ट ने हमारे नुमाइंदे शबीरुज़्ज़मान से बात करते हुए कहा।
1: थ्रूआउट इंडिया आज प्रोग्राम हो रहे हैं, इसी में आप हमारे जीएन के स्टेट सेंटर में भी एक प्रोग्राम मुनक्द हुआ, जहां एक्सपोर्टर्स ने जो डिफरेंट इंजीनियरिंग सेक्टर्स, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स थे, कॉर्पोरेट मेंबर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट किया और अपनी व्यू पॉइंट बताया। और निचोड़ जो उससे निकला उसका यही था कि हमें बड़े बड़े महल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें होम्स बनाने हैं जो हमें लव दे, कम्फर्ट दे, जिसमें इंजीनियरिंग इंटरवेंशन हो, जिसमें ड्रेनेज का नेटवर्क हो, जिसमें प्रॉपर वाटर सप्लाई हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर हो, और जिसमें रहने के लिए वो हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड का नेसेसरी और वाटर बॉडीज को विदाउट हीटिंग उनको यूज नहीं करें अपने कंफर्ट के लिए।
0: नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला श्रीनगर की मजलिस आमला का एक खसूसी इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्द हुआ, जिसमें मजलिस आमला के अराकीन के अलावा जिला श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने शिरकत की। मजलिस आमला से खिताब करते हुए पार्टी सुप्रीमो डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि किसी भी तंजीम की सबसे बड़ी कामयाबी उसकी बालादस्ती, अंदरूनी रब्त जब्त और आईन दस्तूर की पासदारी में मुजमिर है। डॉ अब्दुल्ला ने पार्टी अहदेदारों और कारकुनों पर जोर दिया कि वह हर सतह पर और हर वक्त पार्टी के आईन को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें। प्रदेश बीजेपी की तरफ से आज जम्मू के पुरमंडल और विजयपुर इलाकों में जनसेवा से देश सेवा मुहिम के तहत जानकारी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहा, जो खवातीन, बच्चों और नौजवानों की तरक्की और बहबूदी पर मरकूज थे। पुरमंडल में एक आंगनवाड़ी सम्मेलन से खिताब करते हुए प्रदेश बीजेपी सदर और राज्यसभा के रुकन सत शर्मा ने कहा कि अवामी खिदमत का सरचश्मा असल में जमीनी सतह पर अहल मुस्तहकीन तक पहुंचने और उन्हें बहबूदी स्कीमों के बारे में रोशनास कराने में है। बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने कहा है कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारत ने सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल की है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इस पेशरफ्त की बदौलत जदीद टेक्नोलॉजी और मालसाजी के शोबे में आलमी सतह पर भारत की पोजीशन नुमाया हुई है, जबकि सेमीकंडक्टर शोबे की नमो की वजह से मुल्क के इंजीनियरों, इख्तिराकारों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत के रोल को मजीद तकवीत बख्शने के लिए मौके फराहम हुए हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज, नकल हमल के निजामों और बुनियादी ढांचे के शोबजात के फरोग और इश्तराक से मुतलिक कई मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत भारत के दौरे पर आए हुए स्विट्जरलैंड के सदर गाय पारमेलिन और वजीर अजम नरेंद्र मोदी के दरमियान दोतरफा मुजाकरात के मौके पर किए गए। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर अजम ने भारत और स्विट्जरलैंड के बाहमी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए स्विट्जरलैंड के सदर के अजम को सराहा।
2: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: वजीर अजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के अपने सफर के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इन 25 वर्षों के सफर की कामयाबी वजीर अजम के जनसेवा से देश सेवा के जज्बे से वाजे हो जाती है। इस खसूसी सीरीज के सिलसिले में समाप्त करें ए न्यू नॉर्मल अगेंस्ट टेरर से मुतलिक हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
3: इंतहा पसंदी का असर सिर्फ अमन व अमान तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका असर हमारी रोजमर्रा जिंदगी, कारोबार, तालीम और मईशत पर भी पड़ता है। भारत सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में अमन सलामती को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी को मजीद मजबूत किया जा रहा है, दहशतगर्दी के नेटवर्क और इसकी माली मावनत के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तवज्जो दी जा रही है। इसके साथ साथ आम जिंदगी को बेहतर बनाने, सियाहत को फरोग देने और रोजगार के मौके पैदा करने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बेहतर सड़कें, कनेक्टिविटी और सियाहती सहूलियात एक महफूज और पुरअमन माहौल में खत्ते की मईशत को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं। ए न्यू नॉर्मल अगेंस्ट टेरर का यही पैगाम है कि इंतहा पसंदी को हमारी जिंदगी और तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने देना। अमन, एतमाद, सियाहत और माशी सरगर्मियों को आगे बढ़ाना एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद बन सकता है। इंतहा पसंदी के खिलाफ एक नया मामूल सिर्फ खौफ से निकलने का नाम नहीं, बल्कि अमन, रोजगार, सियाहत और तरक्की को आगे बढ़ाने का

0: अज्म भी है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए नूरुल ऐन इशरत के साथ मैं महमूद अहमद खान।
1: जम्मू कश्मीर पंजाबी साहित्य सभा श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इशराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक रोजा पंजाबी सेमिनार का इनकाद किया। पंजाबी साहित्य सभा श्रीनगर के 59वें यौम तासीस के मौके पर मुनक्कदा इस सेमिनार में यूटी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ पंजाबी जबान के कलमकारों, शौरा, स्कॉलरों और अदीबों ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की सेक्रेटरी हरविंदर कौर ने पंजाबी साहित्य सभा श्रीनगर को पंजाबी जबान और अदब को फरोग देने के लिए उनके रोल को सराहा। आज बांडीपोरा के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और चीफ एजुकेशन ऑफिस बांडीपोरा के बाहमी इश्तराक से एक रोजा अदबी तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में मकाला खानी, महफिल मुशायरा और किताब रोनुमाई की नशस्तें मुनक्कद हुई, जिसमें शौरा, उदबा, माहरीन तालीम और तदरीसी अमले के साथ साथ तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत मारूफ कलमकार प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की, जबकि इस मौके पर कलमकार मसूद हसन सामून मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। कश्मीर फिल्म एंड टेलीविजन एसोसिएशन के एक आला सती वफद ने एसोसिएशन के चेयरमैन मुश्ताक अली अहमद खान की क्यादत में आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला तनवीर सादिक से मुलाकात करके उन्हें यूटी में फिल्म साजी से ताल्लुक रखने वाले पेशेवरों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी दी। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। एक वक्फे के बाद आप सुनिए तबसरा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
2: दीप तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
8: समय आदाब, आज का तबसरा लिए मैं शबीरुज़्ज़मा। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ अपनी काबिल तारीफ ज़री विरासत के लिए मशहूर था। ये वो जमाना था जब जम्मू कश्मीर मुल्क की उन चंद रियासतों की फहरिस्त में शामिल था जो ज़री पैदावार के जिम्न में खुद कफील शुमार होती थी। यहाँ के लोगों, बिलखसूस वादी कश्मीर के लोगों की गजाई जरूरतें मकामी तौर पर ही पूरा हुआ करती थी और इस हवाले से दीगर रियासतों बिलखसूस पंजाब से गेहूं या चावल दरामद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ा करती थी। मगर आज हाल ये है कि गजाई अजनास के लिए हम मुकम्मल तौर पर दरामद के लिए लाचार और बेबस हैं। इस मुश्किल सूरत हाल के लिए अगरचे आबादी में हुए बेतहाशा इजाफे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, मगर इसकी असल वजह यह भी है कि गैर मुस्तहकम तरक्की की दौड़ में हमने अपनी ज़रई जमीनों की नवीयत को इस हद तक तब्दील किया कि आज हमें मकामी अकसाम के चावल मुश्किल से ही दस्तियाब होते हैं और अगर कहीं दस्तियाब भी हैं तो हमें इसके लिए होशरुबा कीमतें अदा करनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ की जमीनें इस कदर जरखेज हुआ करती थी कि इनमें मुश्कबुदज, जग चावल और कमत जैसी आला और मयारी चावल की अकसाम उगा करती थी जिनकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है। आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बदौलत आज हमारे सामने इस तरह की मुश्किल सूरत हाल दरपेश है? जब हम इन वजूहात का जायजा लेने की कोशिश करते हैं तो मालूम होता है कि आबादी में होने वाला बेतहाशा इजाफा तो एक वजह हो सकता है, लेकिन इस सूरत हाल के लिए आबादी में होने वाले इजाफे से भी बड़ी वजह कुछ और है और वो वजह नापायदार तरक्की का न थमने वाला वो लम्बा सिलसिला है जो गुज़श्ता चंद दहाइयों से बेलगाम तरीके से जारी है। इस नापायदार तरक्की के ज़ेर असर हमने अपनी ज़रई जमीनों की नवीयत को तब्दील करके उन्हें गैर ज़रई मकासिद के लिए खतरनाक हद तक इस्तेमाल करने की नाकाबिले तलाफी गलती की है। ये एक ऐसी गलती है जिसके नतीजे में न सिर्फ माहौलियात को काफी नुकसान पहुंचा है बल्कि इसकी वजह से हमारी मईशत के अहम तरीन बुनियादी ढांचे को भी नाकाबिले बयां नुकसान पहुंचा है जिसका कि ज्यादातर दारोमदार ज़िरात और बागबानी के शोबे पर मुनहसिर है। देखने में आया है कि गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान ज़रई जमीनों की नवीयत को बड़ी तेजी के साथ तब्दील किया गया है। एक वक्त में जहां शाली की फसलें लहलहाया

0: करती थी वहाँ आज कॉन्क्रीट के जंगल उग आए हैं। फसल उगाने वाली जमीनों को बस्तियों और कॉलोनियों में बदल दिया गया है जहाँ अब जरी जमीनों का नामो निशान तक मौजूद नहीं। एक तरफ इन जमीनों का रिहाइश के मकसद के लिए इस्तेमाल तो दूसरी तरफ सन्नती फैलाव, जदीद तर बुनियादी ढांचे की तामीर और रियल एस्टेट की मनसूबाबंदी के तहत जरई जमीनों की काया पलट कर दी गई है। यही वो बड़ी वजह है कि एक वक्त में जहाँ ताहद नजर चावल गेहूँ और सरसों वगैरह की फसलें उगा करती थी वहाँ आज रिहायशी कॉलोनियां शॉपिंग मॉल और ऑफिस कॉम्प्लेक्स खड़े दिखाई दे रहे हैं। रियल एस्टेट के शोबे को मिले फरोग और इसके अंदर मौजूद पैसे की चकाचौंध ने इंसान को इस हद तक अंधा कर दिया है कि उसने पेट की जरूरतों को नजरअंदाज करके अपनी तिजोरियों को भरने को फौकियत दी। इस बदलाव के नतीजे में जहां हमारी मईशत कमजोर हुई है वहीं कुछ ऐसे गैर मुआफिक असरात मुरतब हुए हैं जिनका अंजाम तबाहकुन और खतरनाक साबित हो सकता है। 2014 में आए तबाहकुन सैलाब ने वाजह तौर पर यह बावर कराया कि हमने अगर अपनी जरी जमीनों की नवीयत तब्दील नहीं की होती तो सैलाब की तबाहकारी इतने बड़े पैमाने की नहीं होती, क्योंकि ये जमीनें सैलाब की सूरत में एक फ्लड बेसिन के तौर पर भी काम आती हैं, जो अपने अंदर काफी मिकदार में पानी को जज्ब करने की सलाहियत रखती हैं। और जब इन जमीनों की इस सलाहियत को ही खत्म कर दिया गया था तो नतीजा भी सबके सामने आ गया। जरी जमीनों की हैसियत को बदलने की वजह से जहां पैदावार काफी हद तक घट गया है वहीं इसकी वजह से बाकी बची जमीनों की जरखैजियत में भी कमी वाका हुई है और हम चाह कर भी इनमें अब आला किस्म के मयारी और उम्दा चावल नहीं उगा सकते हैं। माहौलियात की जहां तक बात है इसे तो नुकसान पहुंचा ही है। इस बदलाव की वजह से हमारे आबी जखायर भी महफूज नहीं रहे हैं जिन्हें आबी जमीनों के अंदर मौजूद बड़ी मिकदार में पानी को जज्ब करने की सलाहियत की मदद से वाफिर मिकदार में पानी मुयस्सर रहता था। गर्ज जरी जमीनों की नौयत को बदलने का अंजाम हर तरह से हमारे लिए नुकसानदेह ही साबित हुआ है। तहम अब भी वक्त है कि हम अपनी बची खुची जमीनों की अहमियत को पहचान कर उनकी कदर करें और उनकी नवीयत को मजीद बदलने से परहेज करें। साथ ही सरकार का भी फर्ज बनता है कि इस हवाले से मौजूद सख्त कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि जरी जमीनों की नवीयत बदलने के तबाहकुन सिलसिले पर कारगर रोक लगाई जा सके। तबसिरा खत्म हुआ। शब बखैर।
1: वादी की आवाज़।

0: जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों का प्रोग्राम सुनने वाले तमाम सामिन को मेरा प्यार भरा आदाब। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में ताल फिल्म से गीत सुनते हैं, जिसे गाए हैं सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है एआर रहमान। पहले ये वक्फे।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: बसी

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है, अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहे।

0: लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम का अगला नगमा राजा हिंदुस्तानी फिल्म से सुनते हैं। कुमार सानू, अलीशा चिन्नाई और सपना मुखर्जी की आवाजों में समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम शवर ने। पहले ये वक्फे।
1: तीन महीने में पैसे डबल,
2: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
1: क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ
2: और कल होगा भी नहीं।
3: तूने कभी पांच ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
4: ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं।
3: और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे।
2: और फास्ट रिटर्न से महफूज रहके
3: और फास्ट बोलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें।

0: कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक पर, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: लीजिए दोस्तों, अगला नगमा कच्चे दागी फिल्म से सुनते हैं, जिसे गाए हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं नुसरत फतेह अली खान। पहले ये वक्फा।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म से गीत सुनते हैं उदित नारायण और पेमला जैन की आवाजों में। देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है राजेश रोशन ने। पहले ये वक्फा।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता। क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पाहमला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां

0: मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
1: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
2: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
1: एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवर TST।
0: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें क्वार्टिल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में क्वार्टिल आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि AI ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा AI अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और पब्लिक पर @airnewsalerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
5: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
6: आज MOU में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का MOU में शामिल किया है।
0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से

0: कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
1: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन तीन वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
2: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवम्बर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
3: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
4: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
2: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
1: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायो फिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरो साइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Switzerland signed 5 pacts to strengthen cooperation in transport technology, infrastructure and mobility, identify new avenues for defense cooperation and deepen collaboration in nuclear energy. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar says, India's multi-alignment approach enables engagement with major global powers, including US, Russia and China. First cargo vessel since independence sails from Assam to Bangladesh via Brahmaputra, reviving international trade route after 80 years. West Bengal to get 4 new airports in 2 years to strengthen regional air connectivity as the centre and state sign MOU. And German and US scientists win Nobel Prize in Medicine for breakthrough technique unlocking mysteries of the brain. And now the news in detail. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said, during their talks, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
3: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
2: सेक्रेटरी वेस्ट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सीबी जॉर्ज एड्रेस्ड मीडिया इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग ऑन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज।
4: Both sides exchanged the following memorandum of understanding agreements and letters of intent signed during the visit. One, the MOU on migration and mobility partnership. Second, agreement on exchange of young professionals. Third, MOU on mobility between the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Highways. Fourth, letter of intent between Departments of Science and

0: scientist Karl Dassaroff and German scientist Peter Hegemann and Georg Nagel won the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine for developing a breakthrough technique to decode the inner workings of the brain. This method, known as optogenetics, acts as a light-sensitive switch, allowing scientists to potentially map which cells are responsible for which function in the brain. The Nobel Assembly of Sweden's Karolinska Institute made the announcement today. The Nobel Committee said in a statement that the German duo of Hegemann and Nagel discovered a protein in algae known as channel rhodopsin before American scientist Dassaroff transformed the protein into a light control switch for nerve cells. It added that the work has laid the foundation for a new era in neuroscience. Benchmark domestic equity indices rose around 0.6% today, snapping a four-day losing streak. The Sensex gained 473 points to close at 72,382. Nifty climbed 134 points to settle at 22,556. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Switzerland sign 5 pacts to strengthen cooperation in transport technology, infrastructure and mobility, identify new avenues for defense cooperation and deepen collaboration in nuclear energy. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India's multi-alignment approach enables engagement with major global powers including US, Russia and China. First cargo vessel since independence sails from Assam to Bangladesh via Brahmaputra, reviving international trade route after 80 years. West Bengal to get 4 new airports in 2 years to strengthen regional air connectivity as center and state sign MOU. And German and US scientists win Nobel Prize in Medicine for breakthrough technique unlocking mysteries of the brain. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में ताउन को तकवीत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में ताउन को वसत देने से मुतालिक 5 माहिदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुकता नजर उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैनुल अक्वामी तिजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत ने एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरबी बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। और जर्मनी और अमरीकी साइंसदानों ने दिमाग की पुरअसरार पेचीदगियों का इंकशाफ करने वाली तकनीक तैयार करने पर अद्वियात के मैदान का नोबेल इनाम जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान आज नई दिल्ली में 5 माहिदों पर दस्तखत किए गए। ये माहिदे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गी पहमला के दरमियान 2 तरफा मुजाकरात के बाद तय पाए। इन माहिदों में माइग्रेशन और मोबिलिटी, शराकतदारी, नौजवान पेशावर अफराद का बाहमी तबादला, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी निजाम और मखसूस शोबों में बुनियादी ढांचे के फरोग और ताउन जैसे उमूर शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड में भारतीय बरामदात के लिए मार्केट तक बेहतर रसाई का अमल कायम करने और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को मजीद आसान बनाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं।
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: वजारत खारजा के मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा मीटिंग के बारे में आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत

की मंजूरी नहीं दी गई है। साल 2026 का फिजियोलॉजी या अद्वियात के शोबे के नोबेल इनाम अमरीकी शहरी कार्ल डाइसरोथ और जर्मन शहरियों पीटर हैगमैन और गियोर्ग नागेल को दिया गया। इन अफराद को दिमाग के अंदरूनी कामकाज के तरीक़ेकार का पता लगाने की तकनीक तैयार करने में काबिल जिक्र हुसूलियाबियों की बिना पर दिया गया है। ये तरीक़ेकार, जिसे ऑप्टोजेनेटिक्स कहा जाता है, रोशनी पर मबनी स्विच की तरह काम करता है, जिससे साइंसदान ये पता लगा सकते हैं कि दिमाग के कौन से खलियात कौन सा काम करते हैं। स्वीडन में स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली में आज इस बावकार इनाम का ऐलान किया गया। अपने बयान में कमेटी ने कहा कि हैगमैन और नागेल की जर्मन जोड़ी ने चैनल रोडोस्पिन नामी प्रोटीन का पता लगाया।